0: बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

केयर करने का यानी केयरिंग होने का मतलब क्या होता है? देखिए, केयरिंग होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपना सब कुछ छोड़कर, सारा काम धाम छोड़कर एक बंदे के साथ लग जाएं या एक बंदे की परवाह करने लगे, एक बंदे की केयर करने लगे, बिल्कुल भी नहीं। एक इंसान को अगर आप उसकी दवा का टाइम याद दिला देते हैं, अगर आप उसकी पसंद का खाना बना देते हैं, उसको उसकी पसंद के कॉफी शॉप पे कॉफी पिलाने ले जाते हैं, थके होने पर बिना कहे उसके काम में आप मदद कर देते हैं, तो वही केयरिंग होना है। जी हाँ, सामने वाले के दर्द, उसकी खुशी और उसकी जरूरतों का थोड़ा ख्याल अगर आप रख लेते हैं तो वो भी केयरिंग होना है। भाई, केयरिंग होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़कर एक इंसान के पीछे आप लग जाएं। हाँ, और इसलिए कहते हैं कि रिश्तों की गर्माहट अगर बनाए रखनी है तो उनमें परवाह बनाए रखिए, उनमें केयर बनाए रखिए। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए इसी बात पर, और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए ठापन्स आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 एम पर।

चलिए फिर बात कर ली जाए अभी उनसे जो जरा प्यार में हैं, इश्क में हैं और आजकल उस इंसान को फेस कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा कह रहा है कि मैं बिजी हूँ, रिप्लाई देर से आ रहा है, मैसेज सीन नहीं हो रहा है और आपके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, आपका बीपी हाई होता जा रहा है। बॉस थोड़ा ठहर जाइए, ठंडी सांस लीजिए और ठंडा पानी पीजिए। देखिए मैं मानती हूँ कि जब आप रिलेशनशिप में होते हैं आपको आदत हो जाती है कि भाई आपके लिए एक बंदे का जो मैसेज है वो तुरंत आएगा, तुरंत सीन होगा। ऑफ कोर्स आपको अभी तक प्रायोरिटी लिस्ट पर रखा गया है लेकिन अब नहीं रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि शायद

0: Number you carry is a statement of who you are. Qplate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

सुबह का खास और ब्रेकफास्ट शो इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर। समय, प्यार और रिस्पेक्ट, तीन वो चीजें हैं जो आप अक्सर डिमांड करते हैं लोगों से। आप चाहते हैं कि भाई खासकर लाइफ पार्टनर में आप ये तीनों चीजें चाहते हैं कि वो आपको दे, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये तीनों चीजें आपको जिंदगी में कभी भी किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही आप एक लाइफ पार्टनर चूज करें। और खासकर जब आप उसे चूज करें तो ये तीन चीजें ध्यान रखने की जरूरत भी है कि वो आपको देता है कि नहीं। कई बार आप टाइम की डिमांड करते हैं और इंसान आपको टाइम नहीं देता, वक्त नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं देता या फिर प्यार भी नहीं देता। तो जरूरी है कि इन तीन चीजों को जब आप खासकर जीवन को खोज रहे हैं या ढूंढ रहे हैं या आप किसी रिलेशनशिप में कमिटेड होना जा रहे हैं तो इन तीन चीजों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये तीन चीजें आपको वही दे सकता है जो आपके दिल से कद्र करता है। आपको उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मांगी तो भीग जाती है। ये जो चीजें हैं रिलेशनशिप का हिस्सा है और इन्हें आपको उससे मांगने की जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़ती है तो वो रिश्ता आपके लिए कभी भी जिंदगी में कभी भी सही नहीं हो सकता। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। सुनते रहिए, इट हैपेंस, आपके साथ सताक्षी है।

वेलकम बैक। इस एक और गाने के बाद आपने सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। और देखिए, ऐसा है कि किताब से सीखें तो अक्सर नींद आ जाती है। किताब पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, और किताबें कहते हैं ना कि इंसान रात में पढ़ता है ताकि एक अच्छी नींद ले सके, अक्सर सुला देती हैं आपको। लेकिन वहीं जब ज़िंदगी आपको सिखाती है तो नींदें उड़ जाती हैं। बट अफसोस इसी बात का है कि किताब का सीखा हमें याद नहीं रहता, और जैसे कि मैंने कहा, नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं, आप नहीं जानना चाहते उस लेसन को। लेकिन जब ज़िंदगी सिखाती है तो आपको सीखना पड़ता है, और कई रातें आप सो नहीं पाते हैं, आप उस ट्रॉमा में रहते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, आप उस झटके में रहते हैं, और वो लेसन जो है वो फिर ताउम्र आपको याद भी रहता है। इसलिए ज़िंदगी का सिखाया सबक जो है वो सीधे मुझे लगता है सोल पर लिख जाता है, वो कई जन्मों तक भी कभी कभी भूलता नहीं है। इसी बात पर एक और गाने के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रेस्वानी, आप है सताक्षी के साथ, और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो, इट हैपेंस।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

इट हैपेंस. जी हाँ, इसी सफर को आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर. मैंने देखा यार, कुछ लोग ना बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारी डिग्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ उनके पास नहीं होती है, तमीज़. हाँ, ये जो वर्ड है तमीज़, ये लोगों को लगता है कि कैसे बोल रही है लड़की, लेकिन देखिए ये सच बात है. बात करने का सलीका अगर आपको नहीं है, बात करने की तमीज़ अगर आपको नहीं है, अगर आपको सामने वाले को कैसे हैंडल करना है इस बात की क्वालिटी आप में नहीं है, तो होंगी आपके पास न जाने कितनी डिग्रियाँ. आप लाइफ में है ना कितना भी सक्सेसफुल हो, लेकिन एक अच्छे इंसान के तौर पर आप कभी एस्टैब्लिश नहीं हो सकते. सो इसलिए आप जब अपनी पढ़ाई करते हैं, जब आप डिग्रियां हासिल करते हैं या बहुत ग्रोथ करते हैं जिंदगी में, तो ये जो तमीज़ वर्ड है इसे सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना आपकी कही बातें कभी कभी इतनी कटीली हो जाती है कि कोई तीर भी क्या मारेगा, कोई चाकू भी क्या ही हमला करेगा, इतना कड़वा और इतना नुकीला आप बोलते हैं. कुछ लोग होते हैं ना, मतलब लगता है कि यार इसने तो अगर मुंह भी खोला तो फिर पता नहीं क्या ही बोलेगा, तो बात करने से भी लोग उससे डरते हैं. सो ऐसे मत बनिए और सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस, आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर.

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: वेल फ्रेंड्स, ये था इट हैपेंस में। आज मेरा आपके साथ एक और बेहतरीन सा साथ, और आज हमने फिर से कुछ जज्बातों को संवारा, कुछ बातों को सजाया, और अपने इस सफर को, अपने इट हैपेंस को आपके और मेरे लिए, हम दोनों के लिए बहुत ही खास बनाया। तो कल कुछ बातों के साथ, कुछ जज्बातों के साथ, आपके और मेरे किस्से और कहानियों के साथ फिर से मिलूंगी इसी सफर इट हैपेंस में। आज के सफर से अब ले रही हूं विदा, इजाजत। हैव अ ग्रेट डे, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

कल जी मैं हां संदेश अलग शर्मा तो सुन रहे हो रेडियो बसोनी 107.1 ते जुड़ा हो चुके हैं हुन तक ते हम खबरां दा ता फिर चलो करते हैं शुरुआत रुकरदे पंजाब दे वल जिते पंजाब सरकार वलों वड्डा प्रशासनिक फेरबदल कीता गया नवी वंड दे अनुसार तरनप्रीत सिंह सौंध नूं बिजली विभाग दी जिम्मेवारी भी सौंप दित्ती गई है हरजोत सिंह बैंस नूं स्थानक सरकारां विभाग दा वाधू चार्ज सौंपिया गया है इसे तरह अमन अरोड़ा हुण उद्योग विभाग दी कमान संभालणगे इह फेरबदल संजीव अरोड़ा दी गिरफ्तारी दे तुरंत बाद अमल विच लियांदा गया है उधर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटिया के अंदर दूजी बार देशवासियों विदेशी मुद्रा ते देश के दे स्रोतों की बचत करने लई अहम अपील की है गुजरात के वडोदरा विच एक जनसभा नूं संबोधन करते हैं पीएम मोदी ने कहा है कि भारतीय नागरिक होने के नाते सानू अपने कर्तव्य नूं पहल देनी चाहिए है उन्हां चीजां की वरतों घटानी चाहिए है जो विदेशों तो आती है पेट्रोल ते डीजल की खपत घटाने लई पीएम मोदी ने सरकारी ते निजी दफ्तर नूं वर्चुअल मीटिंग ते वर्क फ्रॉम होम नूं तरजीह देने लई कहा है है कि खाण वाले तेल की दरामद ते भी वड्डी मात्रा विच विदेशी मुद्रा खर्च हुंदी है इसलिए वोकल फॉर लोकल नूं ही अपनाउणा समय की मुख लोड़ है प्रधानमंत्री ने खास तौर ते एक साल तक सोना ना खरीदन की अपील की ता जो विदेशी मुद्रा की बचत हो सके उन्होंने मध्य पूर्व विच चल रही जंग का हवाला दिंदे हुए कहा है कि अजिहे विश्वव्यापी संघर्षां दा भारत ते गंभीर असर पैंदा है इस तों पहला एतवार नूं तेलंगाना विच वी उन्होंने यही संदेश दिता सी अपने वडोदरा दौरे दौरान पीएम मोदी ने अनकोल विखे गुजरात के तीजे सरदार धाम प्रोजैक्ट नाल संबंधित वख-वख योजनावां उद्घाटन किया उधर पंजाब की सियासत विच उस वेले वड्डा भूचाल आ गया जदों सियासत विच वड्डा नामना खट्टण वाले संगरूर हलके दे सीनियर आगू ज्ञान सिंह मान अपने साथियों समेत भाजपा विच शामिल हो गए ज्ञान सिंह मान नूं पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ अते हरियाणा दे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैणी ने पार्टी विच शामिल करवाया इस मौके ज्ञान सिंह मान ने कहा है कि वह भाजपा दीआं विकास पक्षी नीतियां तों प्रभावित हो के पार्टी विच शामिल होए हन उन्होंने कहा है कि वह पंजाब अंदर भाजपा की चढ़दी कला लई पूरी ईमानदारी नाल काम करनगे इस दौरान सुनील जाखड़ ने कहा है कि पंजाब अंदर भाजपा का परिवार दिनों दिन वध रहा है लोग वड्डी गिणती विच भाजपा नूं ज्वाइन कर रहे हन उन्होंने साफ किया है कि ना ईडी की रेड रुकेगी ना सीबीआई की हुण सारयां दा हिसाब लिया जाएगा जाखड़ ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास तां सारयां ने देखिया हुण सबका हिसाब लैण दी वारी है उधर पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दी जे गल करिए तां पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने विवादित डॉक्यूमेंट्री लॉरेंस ऑफ पंजाब दे निर्मातावां नूं वड्डी राहत दिंदे होए इस नूं Z5 ते रिलीज़ करन दी इजाजत दे दित्ती है पर इस दे नाल ही एक अहम शर्त भी लगाई है अदालत ने फिल्म निर्मातावां नूं निर्देश दित्ता है कि डॉक्यूमेंट्री नूं रिलीज़ करन तों पहलां इसका टाइटल बदलिया जावे अदालत ने विशेष तौर ते नवें टाइटल विच लॉरेंस अते बिश्नोई शब्दां दी वरतों करन ते पाबंदी लगा दित्ती है प्रोड्यूसरां नूं भी हिदायत दित्ती गई है कि ओह अदालत दे सामने बदलवें टाइटल दी सूची पेश करन ते रिलीज तो पहला इस दी प्रवानगी लैण सुनवाई दौरान पंजाब सरकार ने डॉक्यूमेंट्री दे टाइटल विचों पंजाब शब्द हटाउण दी भी मांग कीती हालांकि हाई कोर्ट ने इस मंग नूं खारिज कर दिता कोर्ट ने इस फैसले नूं एक संतुलित पहुंच वजो देखा जा रहा है जिस विच डॉक्यूमेंट्री की रिलीज़ की इजाजत तो दे दी गई है पर यह भी यकीनी बनाया गया है कि टाइटल विच अपराधिक गतिविधियां नाल जुड़े विवादित नावां दा सीधा हवाला ना दिता जाए ता हुण तक दे अहम खबरां विच बस इना ही खबरां दी वधेरे जानकारी ते सुझाव देण दे लई तुसी साडे नाल जुड़ सकते हो संपर्क कर सकते हो तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो साडी ईमेल आईडी biswani@biswani.com इस दे नाल ही तुसी साडे नाल साडे फेसबुक पेज दे ज़रिए भी जुड़ सकते हो साडा फेसबुक पेज है रेडियो Biswani 107.1 फिर हाजिर होवांगे ताज़ा तरीन खबरां लैके तक लई दिओ इजाजत सत श्री अकाल

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। मैं सोचा कि क्यों ना थोड़े लिए मैं रिव्यूज लेके आ जावा। बहुत कुछ रिलीज होया तो तुम दसना तो जरूरी है ना। तो देखो नी, सोचो कंजूस आदमी की कर सकता है। जिन्ना तुसी सोच सकते हो ना सोचो, इथों तक कि उस तो ज्यादा भी सोचो। जी हाँ, क्योंकि इससे नाल रिलेटेड एक मूवी आई है टोस्टर, उससे बारे में दसूंगी। ते ए फिल्म ट्रेलर तो एक कॉमेडी फिल्म लग रही है की है, ते हुण जिन्हां जिन्हां ने वो देख ली है की है ओ दस दियो। ट्रेलर तो मैं अंदाजा लगा लिया सी, हुण फिल्म किस तरह की है वह तुहानूं मैं जरूर दसूंगी, क्योंकि फिल्म कॉमेडी तो हैगी है, जम के हसाउण वाली हैगी है, पर एक मर्डर मिस्ट्री भी बन जाती है। यह तुसी समझ चुके होवोंगे बहुत कुछ ना। ता चलो फिर मैं दस दिनी है इस बारे, फिल्म दे बारे विच वख-वख कुछ की कुछ है। नैटफलिक्स से रिलीज हुई हैगी है, ते थोनू बहुत हसाउण वाली डराउण वाली भी है दस दिनी इस बारे, पर पहला सुन लो एक गीत।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन संदेश अलग दिनाल बने हुए टोस्टर रिव्यू दसन चाह रही थी मैं तो मैं जो टोस्टर देखी तो मैं अपना पर्सनल रिव्यू दिनी है क्योंकि ट्रेलर देख के नहीं समझ नहीं आई सी ट्रेलर देख के सिर्फ आई लगता सी कि हसाउण वाली हैगी है थोड़ा बहुत लगता सी कि कुछ तो होगा बट बहुत कुछ है। चलो इसकी कहानी दस दिन सब तो पहला ना तो टोस्टर की कहानी है ना जी एक कंजूस आदमी की है कंजूस भी कोई छोटा मोटा नहीं अजिहा कंजूस जो व्याह विच खाना खांदा है तां नाल ही जेब विच दो मतलब पूरियां बनिया हुई ना रोटी बनी हुई है कुछ भी बनिया हुआ पा लैंदा है। एक कंजूस एक व्याह विच ना 5,000 का टोस्टर गिफ्ट करता है पर व्याह टुट जाता है इस तों बाद इस नूं अपना टोस्टर वापिस चाहिए हुंदा है पर टोस्टर वापिस पाउणा सौखा नहीं हुंदा सोचो टोस्टर दे लई हुंदे हैगे ने मर्डर पर अजिहा की है उस टोस्टर विच ए तुहानू फिल्म देख के समझ आऊगा।

पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101 एम ते जीआर चे संदेश अलग दिनाल से बनी हुई हूं। बहुत कुछ दसन वाली हूं मैं थोनों इस बारे, पर पहला किस तरह की है फिल्म वह तो दस देव ना, दसूंगी एक्ट्रेस बारे भी दसूंगी, सब कुछ दसूंगी। तो देखो ये एक कपल की फिल्म हैगी है। इस फिल्म नू देखते ही तुसी पेट फड़ के हसोंगे जरूर। फिल्म का पहला सीन ही बहुत डिफरेंट हैगा है, फिर कॉमेडी का एक गजब खेड शुरू हुंदा है। टोस्टर दे लई मर्डर तक हो जाते ने। फिल्म देख के तुसी लगातार हसते रहोगे, लगातार ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते। एक सैकेंड दे लई भी ये फिल्म तुहानू बोर नहीं करती। फिल्म विच कोई सीन एक्स्ट्रा नहीं लगता। पत्र लेखा ने यह फिल्म अपने बैनर कंप ऑफ फिल्म के अंडर बनाई है। इस फिल्म विच वो एक सरप्राइज होर भी दिंदी है। केड़ा सरप्राइज है दसदी हाँ उस बारे, ते पत्र लेखा तो समझ गए ना वैसे तुसी नहीं समझे, दसदी हाँ उन्होंने बारे बहुत कुछ दसदी हाँ, पर पहला ये गीत सुन लो।
1: Yeah.

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai, जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जी आज जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए। पत्र लेखा दी गल कर रही सी ते मैं गल उत्थे छड्डी सी ना कि इस फिल्म दे विच एक पत्र लेखा ने ना सस्पेंस विच छड्डिया फिल्म देख के ही समझ आऊगा। लीड रोल विच उन्होंने घर दे ही बेस्ट एक्टर नू लिया हैगा। हुण मैं तुहानू कहा सी ना कि तुसी समझ के ना कि पत्र लेखा कौन है, राजकुमार राव दी वाइफ जी। हां ते अपने ही घर दे बेस्ट एक्टर यानी कि राजकुमार राव नू ही लिया इस फिल्म दे विच। इस तो बेहतर चॉइस हो ही नहीं सकती कोई। हर एक्टर दा सिलेक्शन जबरदस्त हैगा इस विच। फिल्म हर किसी दी कॉमिक टाइमिंग कमाल दी हैगी है ते अजे ट्विस्ट आते ने ना जो तुसी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। कुल मिला के नैटफ्लिक्स से फिल्म जरूर देखने वाली है, पर जरूर देखो तुसी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
5: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
4: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
5: बिल्कुल। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: ਸਭ ਤੋਂ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਤੋਂ।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
5: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
6: ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮਕਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕ ਠੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ

0: ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रेस सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रेस सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। ब्रेस सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है. हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं. रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी। रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे ने। सबसे पहले आपसे आर यू फीलिंग टुडे? पीक डेज का पहला दिन आपने सर्वाइव किया, सिर्फ सर्वाइव नहीं किया, ट्यूसडे पे आप पहुंच गए हैं। कैसी चल रही है मेहनत? कैसा चल रहा है एग्जीक्यूशन? जी हाँ, कॉस एग्जीक्यूशन। अपने सपनों का, अपने सपनों के लिए काम अगर नहीं किया इस जिंदगी में तो राइट। कल ही मैं आपको बता रही थी कि कैसे एज भी फैक्टर नहीं है अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। मतलब एज इज ऑल्सो जस्ट अ नंबर। आप कभी भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ा सकते हैं। ये ट्यूजडे को अच्छे से अपनी मोटिवेशन के लिए कीजिए और काम अगर आपने कर लिया है तो वो आपको थोड़ा स्ट्रेस फ्री कर देते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेस फ्री करना हमारा सर्वोत्तम। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेल्दी रिचुअल के साथ। वही हेल्दी रिचुअल जो आपको हेल्दी रहने में हेल्प करता है, फिजिकली हेल्थी में हेल्प करता है, मेंटली हेल्दी रहने में हेल्प करता है। डीप ब्रेथ एक्सरसाइज के साथ शुरुआत करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है काफी। और इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और एक बढ़िया सा गाना आपको सुनाते हैं, क्योंकि गाना बढ़िया होना चाहिए तभी शुरुआत बढ़िया होती है, और शुरुआत बढ़िया होगी तभी तो प्रोग्राम बढ़िया। तो मैं भी बढ़िया, तू भी प्रोग्राम को बढ़िया बढ़िया कर देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले गाना प्ले करने वाली हूँ वो है तो

0: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा बात कर लेते हैं मौसम के बारे में। मौसम क्या कह रहा है, क्या कह रहा है टेम्परेचर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। वहीं अगर बात की जाए अभी के टेम्परेचर की तो 22.8 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर है। फील आपको हो रहा है 22.4 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, रात के टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आप देख पाएंगे और एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट, या नॉट जस्ट फेयर बट एक्सीलेंट। इसी के साथ बारिश की सिचुएशन 70% और आपको पता ही है बारिश की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। अगर आपके इलाके में नहीं भी बनी हुई है तो वो भी हो सकती है। अगेन जैसे मैंने कहा कि बारिश जो है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है और अनप्रडिक्टेबल होना जो है वो बारिश का काम है। बदरा नेचर और ये खूबसूरत खूबसूरत चीजें जो हैं ये अपने हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से नहीं चलती। मैंने कल ही आपको कह दिया था कि कैसे आज भी बारिश होने के पूरे पूरे चांसेस हैं और ये चांसेस जो हैं वो 10 बजे के बाद बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, 10 बजे के बाद बढ़ने वाले हैं। और यहां पर आप मुझे बताइए कि आपके इलाके में बारिश हो रही है या नहीं। इसी के साथ आज के साथ वेडनेसडे यानी कि कल की बात की जाए तो 90% चांसेस है बारिश होने के, यानी कि 1 से लेके 5 एमएम तक की बारिश हो सकती है। पूरी तरह बारिश मैं देख पा रही हूँ विद 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। थर्सडे को भी मैं बारिश देख पा रही हूँ, ऑल्दो चांसेस जो है वो थोड़े कम हो रहे हैं। ट्यूसडे के दिन 70% तक होगा लेकिन 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। तो मैंने आपको कहा था कि भीगा भीगा रहने वाला है ये समा, तो आपको पता ही आपको क्या करना है। वेल ऑफ कोर्स अपनी बारिश वाली नेसेसिटीज के बिना घर से बाहर नहीं निकलना है। रेनकोट, छाता, जो भी आपके पास होना चाहिए रखिएगा, उसके बिना घर से बाहर मत निकलिएगा क्योंकि वो जरूरी है। अगर आप वहां पर हैं जहां बारिश नहीं है और कहीं और जा रहे हैं तो वहां पर बारिश हो सकती है। सो ऑफ कोर्स अपनी चीजें जो बारिश से आपको बचा सके आपके पास होनी चाहिए। ओके, इसी के साथ यहां पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।
1: करदा है ये निया में निया गल्ला ते।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
3: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
4: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना। ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: दोस्तों, और इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार्ज के साथ। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी गपशप है करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, बहुत सारे गाने हैं आपको सुनाने के लिए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज्यादा खास बनाती है भाई, वो तो आपकी फरमाइशें हैं। जी हाँ, आपके फरमाइशें, आपके वो डेडिकेटेड सॉन्ग्स जो आप अपने नियर एंड डियर वंस को देते हो, करते हो, और उसके साथ हमें भी अपनी इन ब्यूटिफुल मेमोरीज का हिस्सा बनाते हो। सो व्हाट आर यू, तो जल्दी से हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। आप भी आ सकते हो, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जी हाँ, सो अपनी फरमाइश के साथ अगर आपको पार्टिसिपेट करना है हमारे प्रोग्राम में, तो जल्दी से फोन उठाइए। नंबर आपको डायल करना है, नंबर है +9182-888-71701। आई रिपीट, +9182-888-71701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर लीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, यहां पर हमारे पास एक गाना आया है जो कि रिकमेंडेशन है, और रिकमेंडेशन है एक बहुत ही खास शख्सियत की। जी हाँ, हमारे बॉस मिस्टर जतिश पूरन जी की, जी हाँ सर की है ये रिकमेंडेशन। गाना बहुत ही खास है, लेकिन वर्जन जो है वो दूसरा है। गाने का नाम है कितनी बेचैन हूं मैं यार से मिलने के लिए, गाना तो ये है, लेकिन यहां पर ये वर्जन दूसरा है। कैसा है, क्या है, आप जब सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच सर इस रिकमेंडेशन के लिए, क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन हमेशा बहुत ही दमदार होती है। सो ऑफकोर्स आई एम एक्साइटेड एंड वी आर एक्साइटेड, एंड आप सब भी अपनी फरमाइशों के साथ जल्दी से आ जाइए, क्योंकि यहां पर आपकी फरमाइशों को जरूर प्ले किया जाएगा।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे के साथ इस दुनिया में अजूबों की कमी नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं हमें पता ही है। हमेशा से ही हम रोज किसी एक अजूबे के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन आज आपको बताएंगे एक ऐसी रियलिटी टीवी स्टार के बारे में जिन्होंने एक बहुत ही विचित्र काम किया है। जी हाँ, अगर आप लोगों को सच में नहीं पता होता, मैं आपको नहीं बताती, और अगर आप इसे सिर्फ वीडियो में देखते तो शायद आपको लगता कि नहीं नहीं ये रियल नहीं हो सकता, ये AI है। क्योंकि एक रियलिटी टीवी स्टार जो कि क्वीन मर्की चैंग है, उन्होंने एक अवार्ड शो में ड्रेस पहनी, और वो भी बहुत ही विचित्र ड्रेस पहनी। आप लोग बोलो कि विचित्र ड्रेस पहनी, मतलब मेट गाला से विचित्र ड्रेस कोई कहां पहन सकता है, राइट? सो मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका मैजिक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड यानी कि AMVCA जो कि नाइजीरिया में होते हैं, उसके लिए क्वीन ने, जो रियलिटी टीवी स्टार है उन्होंने अपना नाम ही क्वीन रखा हुआ है अपेरेंटली, सो शी मस्ट थिंक कि वो क्वीन है तो हम भी उन्हें क्वीन बुला रहे हैं यहां पर। सो क्वीन ने ड्रेस पहनी, बहुत ही गजब की, उन्होंने 500 लॉब्स ऑफ ब्रेड की बनी हुई ड्रेस पहनी। जी हाँ, अब अपेरेंटली उनका बिजनेस है जो कि ब्रेड से रिलेटेड है, और उन्होंने सोचा कि ओके ठीक है, मतलब मेरा बिजनेस है और इस जगह से, मतलब इस अवार्ड शो के रेड कार्पेट पे मैं जाऊंगी, अवार्ड शो में जाऊंगी, मुझे बहुत सारे लोग देखेंगे, तो यहां से बढ़िया जगह क्या हो सकती है अपने बिजनेस को प्रमोट करने की। तो उन्होंने ड्रेस ही बनवा ली 500 लॉब्स ऑफ ब्रेड से बनी हुई। मतलब अगर आपने नहीं देखी है वो ड्रेस तो आप देखना, वो गोल्डन कलर की ड्रेस, सबसे पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि सोने की ड्रेस तो नहीं बना ली, पर जब आप उसकी ट्रेल देखोगे, उसका जो फ्लेयर देखोगे, तो आपको लगेगा कि ना ना ना ये कुछ तो अजीब लग रहा है। वो कुछ तो अजीब आपको इसलिए लगेगा क्योंकि वो ब्रेड है। जी हाँ, वो ब्रेड है। आज दिन तक मुझे लगता था कि मेट गाला में ही सबसे विचित्र ड्रेसेस देखने को मिलती हैं, बट क्वीन ने यहां पर सबको पीछे छोड़ दिया है, ब्रेड की ही ड्रेस बना दी, बताओ जरा। वेल ठीक है, इतना तो मैं कहूंगी कि ये डेफिनेटली मार्केटिंग स्टंट है, और उन्होंने इसे खुद भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसे ही मैंने नहीं किया है, ये जानबूझ के किया गया है, और इसलिए किया गया है कि मैं इतने बड़े शो में जा रही हूं, उसके रेड कार्पेट में जा रही हूं, तो मैंने सोचा कि इससे ज्यादा बढ़िया जगह क्या हो सकती है अपने बिजनेस को प्रमोट करने की। यहां पर मैं इतना तो कह सकती हूँ कि उन्होंने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो कारनामा किया है वो सच में काम कर रहा है। लाइक वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट, मतलब अभी से पहले हमें नाइजीरिया के फंक्शन में या फिर अवार्ड शो में क्या हो रहा था अभी तक नहीं पता था, और हमें शायद इतना मतलब भी नहीं था, लेकिन अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हुई ना ये सक्सेसफुल अपने बिजनेस को प्रमोट करने में। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
12: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है. हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं. रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं.
13: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार नीपिया के साथ. दोस्तों, इसी के साथ किसी की जेब ढीली होने वाली है. आप लोग बोलोगे कि किसकी जेब ढीली होने वाली है नीपिया शर्मा? वेल किसी नॉर्मल इंसान की नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी की. और जितनी जेब ढीली होने वाली है वो उनको ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये लॉ सूट किया गया है, डाला गया है उनके खिलाफ. डुआ लिपा, फेमस पॉप सिंगर डुआ लिपा के द्वारा. जी हाँ, आप लोगों ने सुना होगा डुआ लिपा के नाम के बारे में. अपने आप शी इज अ वेरी वेरी फेमस सिंगर. तो फाइनली उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक काम कर दिया, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका बनता भी है. जी हाँ, वो पैसे उनके बनते हैं. वेल, मैं बात कर रही हूँ डुआ लिपा ने जो केस किया है सैमसंग टीवी के खिलाफ. सैमसंग टीवी ने उनकी पिक्चर का इस्तेमाल किया है अपने टीवीज को सेल करने में, अपने टीवीज को मार्केट करने में, लेकिन उन्होंने डुआ लिपा को कोई फीस नहीं दी, उनकी कोई परमिशन नहीं ली, और फिर भी बिना परमिशन लिए ही उनकी तस्वीर उन्होंने इस्तेमाल वहां पर की अपने सैमसंग टीवी को बेचने में, उसको सेल करने में. अब ऐसे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ओके, बहुत सारे लोग ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की फोटोज जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं, बट कोई सेलिब्रिटी उनके खिलाफ केस नहीं करता. वेल ऑफकोर्स केस होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाली पार्टी जिसने आपकी फोटो इस्तेमाल की है उसकी जेब में कितना दम है. अब किसी नॉर्मल इंसान को तो कोई लॉ सूट डालेगा नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी जेब में उतना दम ही नहीं है कि वो लॉ सूट का पेमेंट उस बड़े सेलिब्रिटी को कर पाए. लेकिन यहां पर डुआ लिपा एकदम अच्छा खेलते हुए नजर आई, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खेला भी और अच्छा बनता भी है खेलना, क्योंकि सैमसंग एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, और आप किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर को इस्तेमाल कर रहे हो, दैट टू विदाउट हर कंसेंट, बिना उससे पूछे, बिना उनको कोई फीस दिए, ये तो सच में गलत है. और ना सिर्फ डुआ लिपा, मुझे ऐसा लगता है किसी की भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए पिक्चर, फिर चाहे वो नॉर्मल इंसान ही क्यों ना हो. हर किसी से उनका कंसेंट लेना चाहिए, तभी ये बड़े बड़े ब्रांड्स को या किसी भी ब्रांड को उनके पिक्चर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। सो डुआ लिपा ने फाइनली $15 मिलियन का केस जो है लॉसूट यहां पर डाला है सैमसंग के खिलाफ। और अब यहां पर बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसी ने लिखा हुआ है नोबडी एंड आई मीन नोबडी बॉट अ टीवी कॉज दे सॉ हर फेस ऑन द बॉक्स। तो किसी ने उसको रिप्लाई करके लिखा कि हे सो आई डिड एक्चुअली। जी हाँ, तो मतलब देयर आर पीपल जो कह रहे हैं कि किसी ने नहीं इसकी पिक्चर देखी, हमने तो टीवी को ऐसे ही लिया है। लेकिन कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने तो पिक्चर देख के टीवी लिया था। सो ऑफकोर्स यहाँ पर डुआ लिपा डेफिनेटली $15 मिलियन जीतने वाली है। और मैं तो कहती हूँ कि ये लॉटरी की तरह काम कर रहा है, राइट? मतलब ये तो लॉटरी लगने जैसा है। ऐसे में कोई हमारी पिक्चर इस्तेमाल कर ले तो क्या हमें बुरा लगेगा? आप हमें बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन खूबसूरत है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

जी दोस्तों, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों यहाँ पर अब जरा बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में। वेल ऑफ कोर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, और वो इम्पोर्टेंट चीज है मूवीज। जी हाँ, मतलब मूवीज हमें एंटरटेन करती है, मूवीज हमारा वक्त अच्छे से गुजारने में हेल्प करती है, मूवीज जो है, सिनेमा जो है वो किंग है। जी हाँ, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही बड़ा शो, एक बहुत ही पॉपुलर शो, अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो ये शो आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लग सकता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम। जी हाँ, फ्रॉम आप देख सकते हैं, अमेज़न प्राइम पर आप इसे देख सकते हैं, और ये शो आपको सब कुछ सर्व करने वाला है। ये आपको साईफाई जॉनर सर्व करेगा, हॉरर जॉनर सर्व करेगा, गॉथिक आपको लगेगा, और ये शो जो है वो लिटरली मास्टरपीस है। मतलब जब ये स्टार्टिंग में आया था तो लोगों को लगा नहीं था कि इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ये आगे को बढ़ा, लोग इसके दीवाने हो गए। और नाउ वी डोंट हैव स्ट्रेंजर थिंग्स जो है वो अब हमारे पास नहीं है, तो लोग ऑफकोर्स इसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो गए हैं, और ये कहीं ना कहीं किसी किसी मामले में स्ट्रेंजर थिंग्स से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, सो ये वही स्टोरी है जहां पर कुछ व्यक्ति जो है, जब भी एक पर्टिकुलर टाउन में लोग पहुंच जाते हैं तो उस टाउन में आना तो आसान है, लेकिन उससे निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जब आप उसमें फंस जाते हो, या फिर जब जो कैरेक्टर्स हैं उसमें फंस जाते हैं, उसके बाद उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं, क्रीचर्स और ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। सो अगेन, इफ दैट इज योर जॉनर, बिकॉज दैट इज माई जॉनर, देन यू कैन वॉच इट ऑन एमेजन प्राइम एंड लेट मी नो क्या आपने फ्रॉम देखा है। सीजन 4 इसका आ गया है, तो अगर आपने इसे बिल्कुल भी नहीं देखा है, आप लिटरली बिंज वॉच कर सकते हो सीजन 4 तक, एंड आई थिंक दैट इज रियली रियली गुड। क्योंकि कभी भी ना ऑनगोइंग सीरीज अगर आप देखते हो तो अगली

अमला जी का, जी हाँ, और ये फरमाइशी गीत है। अमला जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत से गाने के लिए। गाने का नाम है बहारों फूल बरसाओ। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कहूंगी, ये गाना हम सबको कितना पसंद है। सो अगेन अमला जी, ये सिर्फ आपकी फरमाइश नहीं है, ये तो आपने हम सब के लिए ही फरमाइश कर दी है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए हमारे इस प्रोग्राम को। और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुन के आप बोलोगे कि निव्या शर्मा क्या बता रही हो, क्या बता रही हो, पर फिर उसके बाद आप बोलोगे कि निव्या शर्मा ऐसा भी होता है। वेल, ऐसा भी होता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। कभी रिश्ते बनते हैं, कभी रिश्ते टूटते हैं। आप लोग बोलोगे कि अच्छा, ये कुछ रिश्तों के बारे में। वेल, आपने एक कपल के बारे में सुना होगा जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 58 आवर्स का। जी हाँ, उन्होंने किस किया था लगातार 58 आवर्स तक। जी आप लोग बोलोगे कि इज दैट इवन पॉसिबल, 58 आवर्स तक किस करना, लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट निव्या शर्मा। वेल, ऐसा ही कुछ था। जी हाँ, सो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो उन्होंने ये खतरनाक काम किया था वो 58 आवर 35 मिनट का जो है ये किस था, जो कि 2011 में जो है वो मनाया था। जी हाँ, 2011 में जो मार्क हुआ था 46 आवर 24 मिनट्स का, उसको उन्होंने तोड़कर अपना रिकॉर्ड बनाया था। और 58 आवर्स तक लगातार किस करना इज नॉट समथिंग कैन एनी लाइक एवरीवन कैन डू लिटरली। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, सुन रही थी, क्योंकि ये किस वाला जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, एंड इट इज काइंड ऑफ फनी ऑल्सो कि इतना कोई कर भी सकता है। बट या ऑफकोर्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो किसी ने किया ही है, तभी ही ये हो पाया है। बट द थिंग इज कि आज हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि जिस कपल ने ये रिकॉर्ड बनाया, मतलब दोनों ने मिलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया, वो फाइनली उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। जी हाँ, एक डेकेड के बाद, एक बड़ा सा भयंकर सा बम्पर सा रिकॉर्ड बनाने के बाद वो कपल जो है उन्होंने स्प्लिट कर लिया। जी हाँ, अब वो दोनों साथ में नहीं है। आप लोग बोलोगे कि इतने बड़े बड़े रिकॉर्डेड किस करने वाले भी अगर साथ में नहीं रह सकते हैं तो फिर हमें ब्रेकअप्स को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मतलब रिलेशनशिप्स आर गुड, अच्छे से प्यार में रहना चाहिए, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो उस चीज को छोड़कर चले जाना चाहिए। मतलब एडजस्टमेंट के नाम पर सेक्रीफाइसेस नहीं करने चाहिए। या दैट्स व्हाट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट, बिकॉज हम पता क्या करते हैं, हमें लगता है कि रिलेशनशिप्स जो हैं अगर वो बन गए हैं तो मतलब फिर उनको पूरी तरह से निभाना है। और अगर आप रिलेशनशिप को निभाना चाहते हो उसमें कुछ गड़बड़ भी नहीं है, लेकिन अगर उस रिलेशनशिप को निभाने के लिए आपको जरूरत से ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं और कभी कभी आपके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, लेकिन आप फिर भी ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं भाई, रिलेशनशिप है, तोड़ तो नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। सो या ये जो रिकॉर्ड बनाया, इतना भयंकर रिकॉर्ड, लाइक लिटरली 58 आवर्स में, अभी भी सोच रही हूँ कि क्या सच में ये पॉसिबल है। मतलब बट या इट इज पॉसिबल, ये हुआ है, ये दर्ज हुआ है, ये रिकॉर्ड बना है। बट अगेन, रिलेशनशिप्स कैन बी फ्रेजाइल टू। सो अगेन, प्यार कीजिए, शिद्दत से प्यार कीजिए अपनी जिंदगी में। अगर आपने प्यार नहीं किया तो क्या किया, रिलेशनशिप जो है वो बनाइए, और डेफिनेटली शादी भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन खुश रहने के लिए, बिकॉज खुशी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके रिलेशनशिप आपको खुश नहीं रख रहे हैं, देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, मेरी तरफ से नहीं बल्कि ये फरमाइशी गीत है, अगेन एक और फरमाइशी गीत जो मैं प्ले करने वाली हूँ। गाना जो है वो बहुत ही दिलचस्प है, गाने का नाम है सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। जी हाँ, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। अच्छा, तो आप क्या पीते हो? जी हाँ, पीना बहुत ही गलत चीज है दोस्तों, पीने की बात नहीं होनी चाहिए, और पीना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ अल्कोहल इज वेरी वेरी वेरी लीथल फॉर योर बॉडी। आई नो हम तंबाकू को समझते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, स्मोकिंग बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, लेकिन हमको लगता है लिकर जो है वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में कंज्यूम करना इतना गलत नहीं हो सकता, बट इट इज बैड। एंड मैंने शायद आपको बताया अभी था कि अब तो जो लिकर की बॉटल्स है, कुछ कंट्रीज उन पे टैग लगाने वाली है कि इट कैन लिटरली कॉज कैंसर, जस्ट लाइक तंबाकू और जस्ट लाइक स्मोक। जैसे स्मोकिंग या सिगरेट्स के ऊपर लिखा होता था ना कि इट कैन कॉज कैंसर, इट कैन कॉज लाइक रियल डेंजर्स टू योर बॉडी, वैसे ही दारू यानी कि ये जो लिकर है इनकी बॉटल्स पे भी लिखा जाएगा, क्योंकि स्टडीज ने प्रूव कर दिया है कि लिकर भी ओवर द टाइम बहुत खतरनाक हो सकती है। पर चलिए, यहाँ पर गाना है, सो ऑफ कोर्स हम इस गाने को प्ले करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ये गाना आया है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर, बहुत ही क्यूट लिसनर विनी जी की तरफ से, और विनी जी ने गाने का नाम तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, बाकी आप अपना देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर थैंक यू सो मच विनी जी, हमेशा की तरह ये प्यारे प्यारे गाने फरमाइश करने के लिए, और इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, ये तो है ही अगेन बहुत ही ज्यादा यूनिकली खतरनाक। सो ऐसे प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहां ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, यहाँ पर अब एक और बहुत ही खूबसूरत गाना मैं फरमाइशी गीत प्ले करने वाली हूँ। वेल, फरमाइशी का सिलसिला तो ऐसे चल रहा है जैसे कि मतलब एकदम बहार आ गई है, मतलब बौछार और बहार फरमाइशों की दोनों ही यहाँ पर आ गई है। एंड आई कान बी मोर हैप्पी, मतलब इससे ज्यादा क्या ही खुशी होगी जब मेरे लिसनर्स बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं ना, मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। सो थैंक यू सो मच। अब जो मैं फरमाइश प्ले करने वाली हूँ वो है मेरी बहुत ही खास लिसनर पूजा जी की। लेकिन उस फरमाइश से पहले मैं आपको थोड़ा खबरों की तरफ लेकर जाऊं, क्योंकि खबरों की बात करनी पड़ेगी भाई। पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, सबके बारे में बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत से, क्योंकि भारत में इलेक्शन हुए थे कुछ राज्यों में, और उन राज्यों में जो इलेक्शन हुए थे उनके रिजल्ट्स भी आ गए हैं। कहीं पर बीजेपी की सरकार बनी, कहीं पर किसी दूसरी की बनी। असम में हिमंत विश्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और यहां पर पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शपथ ले चुके हैं, लेकिन वो अब सीबीआई से जांच करवा रहे हैं अपने पीए पर्सनल असिस्टेंट की, जो मर्डर हुआ था कुछ दिन पहले उनके शपथ लेने से पहले उसकी। जी हां, सीबीआई अब उसकी जांच करने वाली है। वहीं तमिलनाडु से भी खबर है, क्योंकि सीएम विजय को IDMK के एक गुट का समर्थन मिला, बचे हैं। आपको तो पता ही है कि विजय जो है वो बन चुके हैं एकदम खतरनाक खिलाड़ी पॉलिटिकल वर्ल्ड का भी। जहां वो अपनी फिल्मों से आपको एंटरटेन करते रहते थे, अब वो पॉलिटिक्स में उतर आए। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, एंड गेस व्हाट, उन्होंने पार्टी बनाई और वो पहला ही इलेक्शन जीत गए। और क्या खतरनाक और गजब तरीके से जीते हैं। जी हाँ, उसी के साथ उन्होंने अपनी एक पिक्चर की अनाउंसमेंट की है और सबके सब लोग मतलब एकदम बावले हो गए, क्योंकि वो उनकी जीत को लेकर एक्साइटेड थे, उनकी पिक्चर को लेकर एक्साइटेड थे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं वो पिक्चर जो है वो उनके पॉलिटिकल करियर और वैसा ही पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो उस पिक्चर में दिखाई गई है। उसका नाम भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक इन्होंने रखा है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हो रही है भारत में। तो भाई सबने अपना अपना शपथ ले ली है और जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, और अब आगे की सिचुएशन कैसी होती है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले आए थे और उन्होंने बहुत कुछ कहा था कि सोना मत खरीदिए, जी हाँ, सोने की डिमांड मत कीजिए ज्यादा, 1 साल तक सोना चांदी मत खरीदिए, बाहर विदेशी ट्रिप्स पे मत जाइए, जो भी चीजें आप बाहर की गुड्स लेते हैं, बाहर के ब्रांड्स पहनते हैं, उनको मत पहनिए, इंडिया के ब्रांड्स पहनिए, ताकि हम फॉरेन करेंसी जो है वो ज्यादा ना यूज करें। सो या यहां पर ये सारी की सारी चीजें हुई है। अब चलते हैं सीधा फरमाइश की तरफ। जैसे मैंने पहले ही कह दिया था, फरमाइश प्ले हम करने वाले हैं हमारी बहुत ही खास लिसनर पूजा जी की तरफ से की, और उनकी जो फरमाइश है उसका नाम है मेरे दिल में आज क्या है। जी हाँ, मेरे दिल में आज क्या है, और ये खूबसूरत सा गाना उन्होंने फरमाइश किया। थैंक यू सो मच पूजा जी, हमेशा की तरह खूबसूरत खूबसूरत फरमाइशें यहां पर भेजने के लिए हमें, और हमें इन खूबसूरत पलों का हिस्सा बनाने के लिए। बिल्कुल देर ना करते हुए ये गाना आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं अगेन थोड़ा खबरों की तरफ। और खबरों में क्या हो रहा है यही हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा दुनिया में चलते हैं अब अलग देशों की तरफ। ट्रंप ने शांति प्रस्ताव खारिज किया तो ईरान बोला कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये दोनों देश मिलके ना हमारी खटिया खड़ी करके रहेंगे, मतलब लिटरली मैं क्या बोलूं इन दोनों देश। अरे तुम मान जाओ यार, मान जाओ, तुम दोनों मान जाओगे तो क्या चला जाएगा। लिटरली एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं और अभी अगर नहीं आया ना तो कुछ महीनों में आ जाएंगे अगर ये दोनों नहीं सुधरे। ये लिटरली इन दोनों कंट्रीज को सुधरने की जरूरत है। अमेरिका ने ईरान के युद्ध खत्म करने वाले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद ईरान ने कहा है कि अमेरिका के सामने 14 बिंदुओं वाले प्रस्ताव को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ ने एक्स पर लिखा कि ईरानी लोगों के अधिकारों को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जैसा कि 14 बिंदुओं वाले प्रस्ताव में लिखा गया है। उन्होंने लिखा कि कोई और तरीका पूरी तरह बेकार होगा, लगातार नाकामियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जितनी देर वे टालेंगे उतना ही अमेरिकी टैक्स देने वालों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्तावों पर ईरान के जवाब को पूरी तरह अस्वीकार्य बता दिया है। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए भेजे गए ईरान के प्रस्ताव में कई मांगे शामिल थे। इन मांगों में तुरंत जंग खत्म करने, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने और भविष्य में ईरान पर दोबारा हमला न करने की बात कही गई थी। और ये तो ट्रंप कभी भी नहीं मानने वाला है। जी हाँ, सो यहां पर ये दोनों कंट्रीज मिलके बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम करी। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, ईरान यहां पर क्या कह रहा है कि यहां के लोगों का, ईरानी लोगों के अधिकारों को मानने के अलावा और कुछ नहीं करने वाला। ईरान के लोगों का अधिकार खुद तो वहां की गवर्नमेंट ने माना नहीं, अब बाकी कंट्रीज को मानने के लिए कह रही है। दुबई, यूएई, कतर और बहरीन, इन्होंने कितनी जगह पर हमले फिर से किए हैं। लिटरली मतलब ये कंट्री मेस्ड अप है, दैट्स ऑल आई कैन से। मतलब अमेरिका के तो हो है ही काम खराब, लेकिन ये कंट्री भी मेस्ड अप है। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए, मेरी तरफ से नहीं, अगेन एक फरमाइशी गीत। और ये फरमाइशी गीत आया है हमारे बहुत ही खास लिसनर जस्सी जी की तरफ से। जी हाँ, जिस गाने को जस्सी जी ने किया है फरमाइश, वो है हुई महंगी बहुत शराब। जी हाँ, थोड़ी थोड़ी पिया करो, बाय पंकज उदास जी। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जस्सी जी। और मैं आज ये कहना चाहूंगी, मेरे लिसनर्स बहुत ही रंगीन मूड में लग रहे हैं मुझे आज। मतलब सबके सब थोड़ा सा इसी तरफ, इसी डायरेक्शन में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सो मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मेरे लिसनर्स आज बहुत रंगीन मूड में है। वैसे इतने नहीं होते, पर आज थोड़े से ज्यादा रंगीन मूड में है। जी हाँ, सो ये खूबसूरत सा गाना फरमाइश करने के लिए और मजेदार सा वाइबी गाना फरमाइश करने के लिए जस्सी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल देर ना करते हुए प्ले करेंगे एंड या एंजॉय कीजिए आपकी ये खतरनाक सी फरमाइश।

0: संकेत।
1: जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा ना मूड खतरनाक है मेरे लिसनर्स का, बट मुझे ऐसा लगता है कि मौसम का भी उसमें कुछ हाथ है। एंड अगेन मैं कहूंगी अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, लेकिन हेल्दी तरीके से करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी हाँ, यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं खबरों की, तो यहाँ पर ब्रिटेन से भी खबर आई है, क्योंकि पीएम स्टार्मर की कुर्सी जो है वो थरथरा रही है, मतलब वो कुर्सी से गायब हो सकते हैं। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वेल ध्यान से सुनिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद स्टार्मर के इस्तीफे की मांग तेज हुई। कुल 403 लेबर सांसदों में से 71 सांसद अब तक खुले तौर पर कह चुके हैं कि पीएम स्टार्मर को इस्तीफा देना चाहिए, या कम से कम ये बताना चाहिए कि इस्तीफा कब देंगे। गृहमंत्री शबाना महमूद ने कहा है कि प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को अब साफ बताना चाहिए कि वो कब इस्तीफा देंगे, लेकिन कैबिनेट यानी कि मंत्रियों की टीम में इस मुद्दे पर सबकी राय एक जैसी नहीं है। ज्यादातर मंत्री चाहते हैं कि स्टार्मर अपने पद पर बने रहें। लेबर पार्टी की बैक बेंच सांसदीय कैथरीन वेस्ट ने पहले स्टार्मर के खिलाफ लीडरशिप चैलेंज शुरू करने की बात कही, लेकिन बाद में उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। हालांकि कैथरीन ने साफ किया कि स्टार्मर को सितंबर तक पद छोड़ देना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले स्टार्मर ने कहा था कि वह संदेह करने वालों को गलत साबित करेंगे। उन्होंने माना कि उनकी सरकार से गलतियां हुई, लेकिन दावा किया कि बड़े राजनीतिक फैसले सही लिए गए। अब वो सच में सही लिए गए या नहीं लिए गए ये तो हमको नहीं पता। हम आपको सुनाएंगे यहां पर एकदम खतरनाक सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ट्रंप ने एक और बड़ी ही पेचीदा और पेचीदा से कहूंगी बेतुकी बात यहाँ पर की है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप बोले लाइफ स्पोर्ट पर है सीज फायर। जी हाँ, ऑफकोर्स ये रोस्टिंग सेशन भी है, लेकिन हम आपको बता भी रहे हैं कि इन्होंने क्या नया कांड किया है। सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक महीने से चल रहा युद्ध विराम लाइफ स्पोर्ट पर है। लाइफ स्पोर्ट पर है, जी हाँ। मतलब आप खुद सोचिए कि कभी कभी मुझे इस इंसान की बातों पे इतनी हंसी आ जाती है कि मैं बात भी कंप्लीट नहीं कर पाती, मुझे पहले ही हंसना पड़ जाता है। सो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम अभी जारी है, लेकिन ये बहुत ही कमजोर स्थिति में है, ये लाइफ सपोर्ट पर है। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गलीबाफ ने एक्स पर लिखा कि ईरान की सेना किसी भी हमले का जवाब देने और सबक सिखाने के लिए तैयार है। दरअसल रविवार को ईरान ने अमेरिका को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की शर्तें रखी गई थी। ट्रंप ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बता दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब अगर ट्रंप को पसंद नहीं आया तो मुझे लगता है ट्रंप को रिश्वत नहीं जा रही होगी, ट्रंप फैमिली को रिश्वत नहीं जा रही होगी, क्योंकि जो भी कंट्री उनको रिश्वत देती है, उनकी फैमिली को रिश्वत देती है, उनके तो वो बहुत सगे हो जाते हैं। यू नो व्हाट आई मीन, आपको बहुत अच्छे से पता मैं कौन सी कंट्री के बारे में यहां पे इशारा कर रही हूं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन इशारा जो है वो पूरी तरह आप समझ जाते हैं, वो उन्हीं के सगे हो जाते हैं जो उनको बेनिफिट्स दे रही होती है। अब उस कंट्री का तो खुद की ही हालत खराब है। सो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना से द नेम, बट यू आर वेरी वाइज एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। द थिंग इज कि ईरान की सिचुएशन जो है वो इतनी ज्यादा अजीबोगरीब है कि उनके पास कोई बहुत भारी भरकम बॉम्ब नहीं है, उनके पास कोई ऐसी बहुत खतरनाक सी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि उनके पास जो भी है उसको वो बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, वो अपने $30,000 के ड्रोन से लिटरली $4-4 million या $100-100 million की उनकी जो है वो जेट्स जो है वो तबाह कर रहे हैं, उनकी मिसाइल्स जो है वो तबाह कर रहे हैं, उनके एंटी डिफेंस मैकेनिज्म को है वो खत्म कर रहे हैं। मतलब अमेरिका जो है वो इतना खर्चा कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, उनसे जो है वो निपटने के लिए, लेकिन ईरान मजे से अपने $30,000-30,000 के ड्रोन से ही उनका काम खराब कर दे रहा है। मतलब लिटरली अमेरिका को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो बहुत ही सस्ते हथियारों ने पहुंचाया जो कि ईरान की तरफ से आए। मतलब उनको बड़े हथियार की जरूरत ही नहीं है। एंड यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहे हैं ट्रंप। मतलब मैं मानती हूं कि काश पटेल और पीट हेग्सेथ दोनों ही जो हैं वो पीने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। या आई थिंक आज हम पीने के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बट या इट इज व्हाट इट इज। सो ट्रंप तो ट्रंप है, लेकिन उनकी जो सेना है वो भी और खतरनाक है। मतलब पियक्कों की सेना है उनकी। मतलब काश पटेल पे चल रहा है कि ओके ये तो बड़ी ही खतरनाक बॉटल्स जो है वो गिफ्ट करते। पीट हेग्सेथ भी इतना तो उनका रक्षा बजट का जो पार्ट है वो हथियारों के लिए नहीं जाता जितना उनके लिए खुद के लिए जाता है, जो FBI के लिए जाता है, जो रक्षा मंत्रालय के खाने पीने में जाता है। मतलब उनको लॉबस्टर्स पसंद है, उनको ये सारी चीजें करना पसंद है। सो ट्रंप की खटिया ना पहले ही खड़ी हो चुकी है। और यहां पर आपको एक और फनी चीज बताती हूं, मेरे को सोशल मीडिया पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है दिख जाते हैं, मतलब मैं देखूं चाहे ना देखूं मुझे दिख जाते हैं। और उनमें से कुछ ये भी कह रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स तो अब गड़बड़ होने वाला है। किसी ने तो ये भी कह दिया कि हम तो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगले साल जुलाई से पहले ही इनका काम खराब होने वाला है। तो मैं ये सोच रही हूं कि अपना काम खराब तो कर ही रहे, लेकिन बाकी दुनिया का भी कर रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस। तो सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को ये सोच लेना चाहिए कि खुद अगर लाइफ सपोर्ट पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनके कंट्री के ही लोग उन्हें लाइफ सपोर्ट पे भेज देंगे, बिकॉज इतनी महंगी चीजें हो रही है। मतलब जो इन्फ्लेशन रेट है हर कंट्री का वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि ऑल थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। दिल तो कर रहा है कि उनके सर पे एकदम उनकी आरती उतार। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा तुम कुछ और बोल रही थी, ये आरती उतारने वाली है। आपको पता है हम मीडिया वाले लोग हैं, हम बहुत सारी चीजें कहना चाहते हैं, लेकिन हमें बहुत ही अच्छे से मैनर्स के साथ, एटिकेट्स के साथ अच्छे से हमें बोलना है। सो ऑफकोर्स हम आरती उनकी उतारना चाहते हैं, लेकिन कौन सी वाली, यू नो वेरी वेल। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com, the one stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों अभी कल ही की बात है, एक बहुत ही खतरनाक चीज हुई। जी हाँ, और वो फुटबॉल की हिस्ट्री में जो है वो खतरनाक चीज थी। मतलब ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जो हुआ उसने बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। मतलब वाइल्ड सीन्स अरप्ट हुए एट प्राग डर्बी आफ्टर मैसिव पिच इन्वेजन। मतलब लोगों ने पिच को इन्वेड कर दिया। जी हाँ, सो क्या मामला है? सो द डर्बी मैच था जो कि एसके साल्विया प्राग और एसी स्पार्टा प्राग के बीच में था, उसको अबैंडन करना पड़ गया टीम्स को, क्योंकि लोग जो है वो अपने हाथों में वो चमकदार सी चीज लिए एकदम पिच पर आ गए और वहां पर टीम्स को अपनी धोती बचाकर भागना पड़ा। जी हाँ, धोती बचाकर भागना इसलिए पड़ा, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लिटरली वो वैसे ही भागे। अब मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग जो इंसान हैं वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। मतलब हम क्या सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन सकते? जी हाँ, मतलब हम कभी कभी देखते हैं कि हम लोग अगर अच्छे से रहना चाहें तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम क्या चूज करते हैं? नहीं नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़बाजी, कुछ ना कुछ घपलाबाजी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ। इनफैक्ट लोकल रिपोर्ट्स ने तो ये भी कह दिया कि सपोर्टर्स जो है उन्होंने रश किया फील्ड में और उन्होंने जो है कुछ ही मिनट्स में जो है वो उन्हें टीम्स को जो है वो मैच छोड़कर जो है वो भागना पड़ा। जी हाँ, और इनफैक्ट यहाँ पर कुछ फैंस जो है उन्होंने कन्फ्रंट किया स्पार्टा प्राग के प्लेयर्स को, उनको फोर्स किया गया कि वो जल्दी से जल्दी वो भागे ताकि उनके बस जो है वो छूट ना जाए, क्योंकि इतना मैसी सीन हो गया था कि आपको आइडिया भी नहीं है। मतलब फुटबॉल मैच जो कि कुछ और ही बन गया, कुछ और ही। मतलब पीपल आर लाइक दे आर जस्ट डूइंग एनीथिंग। और ऐसा ही कुछ सीन जो है जब लियोनल मेसी आए हुए थे कोलकाता में, तब भी देखने को मिला था। मतलब मेसी को भी भागना पड़ा और जहां पर इतनी सारी चीजें जो है वो लोगों ने प्रॉमिस की थी वो कुछ भी करने को नहीं मिला। मतलब आप अपने स्टार्स को, अपने आइडल्स को ऐसे भगा दोगे तो कैसे चलेगा? जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज्जी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
0: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
0: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल। ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है।

0: रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन कन्वेंशन सेंटर में आज से ऑस्ट्रेलियाई मैन्युफैक्चरिंग वीक की शुरुआत हुई है। यहां 230 से ज्यादा कंपनियां अपनी लेटेस्ट रोबोटिक्स और AI टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर रही हैं। इसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा औद्योगिक शो माना जा रहा है। इसी के साथ ब्रिस्बेन की जॉर्ज स्ट्रीट सहित संसद में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी दल ने सरकार के दो मंत्रियों के बीच कथित निजी रिश्तों को लेकर ईमानदारी का मुद्दा उठाया है, जिसे लेकर वहां की राजनीति में काफी गर्माहट बनी है। वहीं ब्रिस्बेन काउंसिल ने नदी के किनारे नए ग्रीन जोन और पैदल चलने वाले रास्तों के लिए भारी बजट मंजूर किया है। इसका मकसद 2032 ओलंपिक से पहले शहर को और भी खूबसूरत बनाना है। इसी के साथ ताजा आंकड़ों के मुताबिक ब्रिस्बेन में घरों की कीमतों में इस महीने भी 101.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। शहर के साउथ साइड इलाकों में किराए के घरों की भारी मांग के चलते लोग अब बाहरी इलाकों का रुख कर रहे हैं। वहीं ब्रिस्बेन मेट्रो के नए रूट पर आज से ट्रायल शुरू हो गया है। प्रशासन का कहना है कि इस नई व्यवस्था से शहर के ट्रैफिक कंजेशन में करीब 20% तक की कमी आएगी। वहीं ब्रिस्बेन के साउथ बैंक में आज शाम से एक मल्टी कल्चरल आर्ट फेस्टिवल शुरू हो रहा है। इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ साथ इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे पूरा शहर रंगीन रोशनी में सराबोर दिखेगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले आज का दिन असम के लिए ऐतिहासिक है। हेमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। वहीं पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से अपील की है कि जहां मुमकिन हो वो लोग वर्क फ्रॉम होम अपनाएं। इससे न केवल सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा बल्कि ईंधन की बचत भी होगी। इसी के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद एक नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट TMC की उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिनमें आरोप लगाया गया है कि वोटिंग लिस्ट से नाम हटाए जाने की वजह से जीत हार का अंतर प्रभावित हुआ। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज साफ कर दिया कि देश में पेट्रोल डीजल और LPG का पर्याप्त स्टॉक है। इंटरनेशनल मार्केट में चल रही हलचल के बावजूद भारत के पास अगले कई महीनों का सुरक्षित भंडार मौजूद है। वहीं सिनेमा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, रणबीर सिंह अब स्क्रीन पर भगवान शिव के रूप में नजर आएंगे। अमीश त्रिपाठी की बेस्ट सेलर किताब द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा पर बनने वाली इस मेगा मूवी की आज आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ तमिलनाडु में आज फ्लोर टेस्ट से पहले AIDMK में फूट की खबरें तेज हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी का एक बड़ा हिस्सा विजय के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे सकता है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हुआ सीज़फ़ायर समझौता अब लाइफ सपोर्ट पर है। वहीं तीन दिनों के छोटे से युद्ध विराम के बाद रूस और यूक्रेन के बीच फिर से हमले शुरू हो गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह ड्रोन से हमला हुआ है। इसी के साथ ईरान के एक बड़े नेता ने चेतावनी दी है कि अगर उनके देश पर फिर से हमला हुआ तो वो यूरेनियम को 90% तक इनरिच कर सकते हैं, जो हथियार बनाने के लिए काफी है। इस बयान के बाद ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में फिर बढ़ावा देखा गया है। वहीं फ्रांस में एक महिला क्रूज यात्री के एंडीज हंता वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ये महिला उसी शिप पर थी जहां हाल ही में वायरस का प्रकोप देखा गया था। वहीं आज से दुनिया का सबसे मशहूर कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है। जान ट्रेवोल्टा और एडम ड्राइवर जैसे बड़े सितारे रेड कार्पेट पर अपनी चमक बिखेरते हुए दिखे। इसके साथ फिलीपींस की उपराष्ट्रपति सारा दुतेत्रे के खिलाफ वहां के संसद ने महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट चलाने का फैसला किया है। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले कल रात धर्मशाला में खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से मात दी। वहीं भारत के गांधीनगर में आज से एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है। 44 साल बाद भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। वहीं AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का मुकाबला मेजबान चीन से हो रहा है। अगर भारतीय टीम ये मैच जीत जाती है तो उनके वर्ल्ड कप में जाने के रास्ते साफ हो जाएंगे। इसी के साथ मिस्र के गीजा में चल रही वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत का सफर खत्म हो गया है। भारत के उभरते खिलाड़ी और चेतारानी चोत्रानी को दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी मुस्तफा असल के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: है रेडियो 1701 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं।
2: ये रेडियो ब्रिजवानी है और मैं आपका साथी अंबिका प्रसाद हूँ। मंगलवार की शाम की बेला है, 12 तारीख मई है और आज एक बार फिर मैं आपके समक्ष अपने पुराने गीतों के जो गुलदस्ते हैं लेकर आ गया हूँ और आशा है इनकी महक आपके घर तक पहुँचेगी, आपके कानों तक पहुँचेगी, आप इससे आनंद लेंगे। दोस्तों, ब्रिजबेन का जो मौसम है तो आप समाचारों में देखते हैं, मैं क्या बताऊं, लेकिन हाँ अद्भुत लग रहा है क्योंकि कहीं गर्मी है कहीं ठंडगी है, अचानक से थोड़ा हवा चल जाता है तो ठंडे हवा चलने लगते हैं, टेम्परेचर जो है 10-12 डिग्री से लेकर 25-26 तक अभी होते हैं। दिन को कुछ धूप है फिर बदली भी रहती है तो सब थोड़ी थोड़ी इधर से उधर फुहारे बरस जाते हैं, कुछ खास नहीं है लेकिन हाँ हम जान देखते हैं। अभी फ्लू का सीज़न चल पड़ा है यहाँ बहुत ज़ोर से, बहुत यंग चिल्ड्रन बच्चे जो हैं स्कूल से जाते हैं या शॉपिंग वगैरह जाते हैं, फ्लू का जो असर है पड़ जाता है, उसको लेकर घर आते हैं फिर घर पे सबको बांटते हैं। ये एक सिलसिला है जो हमेशा चलता रहता है कि हम जानते हैं स्कूल्स जो हैं वो फ्लू के शॉप्स हैं ज़्यादातर, और किंडी है, स्कूल्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, कोई फ्लू लेकर आता है कहीं कहीं ना कहीं से आपके उसमें उस झमेले में आप फंस जाते हैं तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। खैर कुछ भी हो, मैं स्वागत करता हूँ अपने बहुत ऐसे लिसनर्स हैं जो कोई रेडियो डायरेक्ट रेडियो द्वारा सुन रहा है हमारे ब्रिस्बेन और लोकल इलाके में, कुछ ऐसे बहुत लोग हैं जो देश प्रदेश से सुन रहे हैं, आप इंटरनेट द्वारा सुन रहे हैं या आप हमारे ऐप्स द्वारा सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM बैंड जिसका प्रसारण हम अपने 17 Mile Rocks स्टूडियो से कर रहे हैं। और हमारे स्टूडियोज में इस वक्त 7:08 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं अंबिका प्रसाद को। चलो मैं एक भजन लाता हूँ, बहुत पुराना भजन है और इस भजन को हमने लिया है एक पुराने सीडी से और इसको अदा किया है मन्ना डे जी। चलो उनके मुखारविंद से हम सुनते हैं, राम नाम सुखदाई, भजोरे राम नाम सुखदाई।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन में, आपका साथी अंबिका प्रसाद हूँ। हमारे स्टूडियोज में इस वक्त 7:21 हो रहे हैं। 8 बजे तक मैं आपके साथ रहने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, पुराने गीतों का जो भंडार हमारे पास है उसी में से मैं उनके जो महाकाव्य आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब चलो हम देखते हैं अगला जो गीत है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या बात है मुश्किल जी, आप सुनिए। ये 1949 का गाना है। 1949 में कोई मूवी निकली थी, उसका गाना है। और चलो देखते हैं क्या मुश्किल है, क्या आसान है।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: दोस्तों हम आगे बढ़ते रहे हैं। हमारे स्टूडियोज में इस वक्त 7:31 हुए, यानी 8:19 रह गए, और आप सुन रहे हैं रेडियो बुरुजबानी। मैं आपका साथी अंबिका प्रसाद हूँ। अपना ये प्रोग्राम हम 17 Mile Rock Road स्टूडियो से ला रहे हैं, और ये पुराने गीतों का गुलदस्ता है। चलो बहुत बहुत बहुत पुराने पुराने गीतों को आपके समक्ष लाते हैं। दोस्तों एक अभी हम देख रहे थे न्यूज़ में, ये जो ईरान और USA का लड़ाई चल रहा है, सीज फायर होता है, अनाउंस होता है, फिर कुछ दिन रहता है, फिर बंद, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर शुरू होता है, फिर होता है। आप देखिए एक एक एक तरह का पैटर्न है। वीकेंड जब नज़दीक होने लगता है तब सीज फायर शुरू हो जाता है और ऑयल का प्राइस गिर जाता है। जैसे वीकेंड ख़त्म, कुछ बातें होते हैं, कुछ इधर उधर थोड़ा एक्सचेंज होते हैं इन्फॉर्मेशन, फिर अनाउंस हो जाता है कि चलो सीज फायर नहीं है, हम अब लड़ाई करेंगे, तो ऑयल का प्राइस फिर चढ़ जाता है। और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में गेम खेलते हैं, और ये शायद एक रेगुलर सिस्टम हो गया है। एवरी ऑफन, सो ऑफन ऐसे होता है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह देता है, शायद हो ना हो, अब हम देख रहे थे न्यूज़ में कि एक किसी तरह का इनसाइड गेम है कि हम ऐसे बोल देंगे तो उसका दाम गिर जाएगा, आप अपना स्टॉक मार्केट में खरीद लेना, फिर हम अनाउंस करेंगे, आप बेच देना। तो ऐसे ही होता रहता है, और आप जो शेयर मार्केट में, जो शेयर मार्केट वाले हैं वो शेयर ट्रेडिंग करते हैं, वो इनसे बहुत बहुत बहुत भारी फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट का प्राइस थोड़ा भी अंतर होता है, प्राइस बहुत हो जाता है, क्योंकि कितने शेयर्स आप लिए हैं, धड़ाक से आपको एक मिनट में हंड्रेड से नहीं तो मिलियंस आप बना सकते हो। तो हो सकता है कि ये सब सजी बजी खेल हो रहा है यूएस से, कुछ होता नहीं है, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होता, सिर्फ पेपर पे है कि हम करेंगे, सीज़फ़ायर करेंगे, राइट, दाम गिर गया, नहीं सीज़फ़ायर करेंगे, वहाँ हम हंगामा करेंगे, दाम चढ़ गया। तो ये साइकिल चलता है, और मेरे ख्याल से अब ये गेम बहुत अद्भुत रूप रंग ले रहा है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है, ये सब पे जाने लगा। अगर आप देखना चाहें तो आप टीवी पे देख सकते हैं, आजकल बहुत न्यूज़ आती है, लेकिन बहुत ऐसे न्यूज़ हैं जिनको हम विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोई चाहता है वही छोड़ता है। इसका कोई सोशल मीडिया पे कोई ख़ास कंट्रोल अब सच्चे न्यूज़ का और बनाए हुए न्यूज़ का अंतर बहुत कम हो गया। तुम पढ़ना चाहो बहुत कुछ उसमें है, जो जे चाहता है जैसा उसे छोड़ देता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं कर पाता है, या कि इनको पकड़ नहीं पाता कि क्यों आप फॉल्स न्यूज़ दे रहे हैं या अपना ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन वो न्यूज़ बनाकर दे रहे हैं। तो अब तो समझ में नहीं आता कि क्या सच्चा है क्या झूठा है, लेकिन हाँ सच्चाई यही है कि हमारी महंगाई बहुत बड़ी है, और सच्चाई यही है कि जब प्राइस या सीज़फ़ायर अनाउंस होता है और नहीं अनाउंस होता है, एक रेगुलर पैटर्न हो गया है हफ्ते में। आप देखिए एक पर्टिकुलर डे शुरू हो जाएगा, फिर वीकेंड में रहेगा, फिर वीकेंड के बाद में फिर दूसरा चेंजेस हो जाएगा। तो ये सब मेरे ख्याल से शेयर मार्केट से लिंक्ड है, और बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं ये इनसाइड जॉब जानते हैं, इनसाइड में क्या होने को है, और उसी के मुताबिक चलते हैं। और इसमें सबसे पावरफुल वो इस मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का है, जो बोलता है उसी पर लोग फिर भागने लगते हैं, और वही होता है जो आम आदमी अपने फायदे के लिए करता है, क्योंकि और कुछ नहीं होता इसमें। ये लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है, थोड़ा मोड़ा कहीं कोई इधर झड़प कर दिया, कोई उधर कर दिया, वही चल रहा है। और देखो गरीबी ये लड़ाई के कारण है, तेल के कारण है, तो उसको हम फील करते हैं, और बाकी जो है कुछ अच्छे न्यूज हैं, कुछ झूठे न्यूज हैं, कुछ बनाए हुए न्यूज हैं, कुछ AI पिक्चर्स हैं, AI से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आप कुछ भी कर सकते हो, वो ये लोग कर रहे हैं। तो आप इस पे भरोसा मत करें जब तक आपके कोई ठोस प्रूफ ना मिले कि कहाँ कहाँ का एक सोर्स है। खैर चलो, बातें हैं बहुत करनी से कर रहे हैं। यहाँ ये जो करंट अफेयर है, करंट है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। चलो आप सुनते हैं एक और गीत, आएगा आएगा आने वाला आएगा, कब आएगा।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: जारी रूप इसमें को सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं आपका साथी अंबिका प्रसाद हूं। हमारे स्टूडियो में इस वक्त 13 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, और 8 बजे तक आपका साथ रहूंगा। और एक बहुत पुराना गज़ल है, इसको मैं पहली बार सुना था अपने यूनिवर्सिटी डेज में 1977-78 के बाद में कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा उस वक्त, और ऐसा इतना नया रहा होगा। तलत अजीज ने इस गज़ल को अदा किया है, और इनके बोल हैं, प्यार तुम्हारा भूल तो जाऊं लेकिन प्यार तुम्हारा है। ये उन दिनों के बहुत पुरानी यादें हैं दोस्तों। चलो इस गज़ल के साथ अपने को बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, चलो आपसे शेयर कर रहा हूं।

0: thinking Byron Bay.
1: Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
2: जी हाँ दोस्तों, हम आगे आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते रहें और हमारा जो टाइम है 6 मिनट रह गए हैं 8 बजने में और 8 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा. चलो एक गीत छेड़ रहा हूँ, आशा है आपको पसंद आएगा और समय रहा तो कुछ बातें करेंगे, नहीं तो आपसे विदा चाहेंगे. पहले गीत को सुनते हैं.

जी दोस्तों, इसी गीत के साथ साथ हमारे स्टूडियोस में 8:02 रह गए हैं और मैं आपका साथ यहीं पे छोड़ना चाहता हूं। और अगले हफ्ते या अगले 2-3 हफ्ते मैं शायद प्रोग्राम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कुछ बाहर भी जा रहा हूं और अपने हेल्थ के लिए कुछ हमें सर्जरी वगैरह भी कराने, तो ये कैसे रहेगा मालूम नहीं। लेकिन हाँ, मैं जून फर्स्ट वीक जून तक आपसे विदा लेना चाहता हूँ। उसके बाद में अगर स्वास्थ्य ठीक रहा सर्जरी के बाद तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो टाइम लगेगा। जैसे आप जैसे रहेगा हम आपसे मिलेंगे, पता चलेगा। और दोस्तों, साथ दिया आपने इसके लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, विंटर का समय है, बहुत सारे फ्लू अभी चल रहे हैं और ना मालूम कौन फ्लू कौन किस तरह किस समय किसको चपेट ले। आप अपना ख्याल रखें, हो सके तो मास्क वगैरह पहने या बाहर मत जाएं बेकार के, इधर उधर जो बड़े बड़े भीड़ में ना जाएं, क्योंकि अब ये जो मौसम है और समय है पता नहीं क्या है कि बहुत ज़्यादा इसमें वायरस बैक्टीरिया होते हैं। आप अपना ख्याल रखें और गैरों का भी औरों को भी ख्याल रखें। चलो, आपने साथ दिया अभी तक, अच्छा लगा मुझे और आपका फीडबैक मिलते रहे। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ ये लोग फीडबैक देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वक्त के लिए, अगले टाइम के लिए जब तक नहीं आऊँ तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नो अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ। ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Honey, ye tum kahan le ja rahi ho? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
0: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
5: ऐसा क्या खास है वहाँ?
0: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक, और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
5: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
0: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818, दैट्स 3804-3818।
6: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
7: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
6: अरे वाह, इनका पता बताना।
7: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365। दैट्स 3273-7365। और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
6: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
5: गो फॉर द बेस्ट विरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज्जी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन जी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
6: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
5: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
7: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
8: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
7: ऐसा क्या खास है वहाँ?
8: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
7: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
8: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है. हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं. रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं.
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
11: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
13: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
11: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड.

बिल्कुल ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सऑर्ग स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
8: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 04305258 96, दैट इज 04305258 96। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Ek ladki thi deewani si. Ek ladke pe wo marti thi. Nazrein chuka ke शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था,

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी हाँ तुम बड़े हुए हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसन वन एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन बन चुके हो ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला हो चुका है जी शुरू ते इन्हां गल्लां नूं लगाउणा असीं पंजाबी गीतां दा तड़का तुसी की कहना है तुसी जुड़ रहा है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो रेडियो बसवानी वंसन वन एम साडा फेसबुक पेज है जी बसवानी एट बसवानी डॉट कॉम साडी ईमेल आई डी है जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी ओह अपनाओ साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो सानू चाहिए हो तुसी साडे नाल जुड़े हुए हमेशा जिस दे नाल दिन साडा भी चंगा निकलदा ते थानू असी एंटरटेन करदे आं सोहणे सोहणे गीत सुणाउंदे आं तां जुड़दे रहो तुसी साडे नाल सुणन लई गीत ते नाल करन दे लई गल्लां बातां तुसी जुड़ना शुरू करो मैं हुण वापस आउंदी आं उहनां समां इहनां सोहणे गीतां नूं इंजॉय करो।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। मैं सोचा कि क्यों ना थोड़े लिए मैं रिव्यूज लेके आ जावा। बहुत कुछ रिलीज होया तो तुम दसना तो जरूरी है ना। तो देखो नी, सोचो कंजूस आदमी की कर सकता है। जिन्ना तुसी सोच सकते हो उन्ना सोचो, इथों तक उस तो ज्यादा भी सोचो। जी हाँ, क्योंकि इससे नाल रिलेटेड एक मूवी आई है टोस्टर, उससे बारे में दसूंगी। ते ए फिल्म ट्रेलर तो एक कॉमेडी फिल्म लग रही है की है, ते हुण जिन्हां जिन्हां ने वो देख ली है की है ओ दस दियो। ट्रेलर तो मैं अंदाजा लगा लिया सी, हुण फिल्म किस तरह की है वह तुहानूं मैं जरूर दसूंगी, क्योंकि फिल्म कॉमेडी तो हैगी है, जम के हसाउण वाली हैगी है, पर एक मर्डर मिस्ट्री भी बन जाती है। यह तुसी समझ चुके होवोगे बहुत कुछ ना। ता चलो फिर मैं दस दिनी है इस बारे, फिल्म के बारे विच वक वक कुछ की कुछ है। नैटफलिक्स से रिलीज हुई है की है, ते थोनू बहुत हसाउण वाली डराउण वाली भी है दस दी इस बारे, पर पहला सुन लो एक गीत।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ सुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। टोस्टर रिव्यू दसन चाह रही सी ना मैं तुहानू, तां मैं जदों टोस्टर देखी तां मैं अपना पर्सनल रिव्यू दिनी हैगी आ, क्योंकि ट्रेलर देख के नहीं समझ नहीं आई सी। ट्रेलर देख के सिर्फ आए लगता सी कि हसाउण वाली हैगी है, थोड़ा बहुत लगता सी कि कुछ तो होगा, बट बहुत कुछ है। चलो इसकी कहानी दस दिनी है। सब तो पहला ना तो टोस्टर की कहानी है ना जिहड़ी एक कंजूस आदमी की है, अते कंजूस भी कोई छोटा मोटा नहीं, अजिहा कंजूस जो व्याह विच खाना खांदा है तां नाल ही जेब विच दो मतलब पूरियां बनियां होईयां ना, रोटी बनी हुई है, कुछ भी बनिया हुआ पा लैंदा है। एक कंजूस एक व्याह विच ना 5,000 दा टोस्टर गिफ्ट करता है, पर व्याह टुट जांदा है। इस तों बाद इस नूं अपना टोस्टर वापिस चाहीदा हुंदा है, पर टोस्टर वापिस पाउणा सौखा नहीं हुंदा। सोचो टोस्टर दे लई हुंदे हैगे ने मर्डर, पर अजिहा की है उस टोस्टर विच, ए तुहानू फिल्म देख के समझ आऊगा।

0: ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the Great Australian Dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
2: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है. हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं. रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं.

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत-बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। पत्रलेखा दी गल कर रही सी ते मैं गल उत्थे छड्डी सी ना कि इस फिल्म दे विच एक पत्रलेखा ने ना सस्पेंस विच छड्या फिल्म देख के ही समझ आऊगा। लीड रील विच उन्होंने घर दे ही बेस्ट एक्टर नू लिया हैगा। हुण मैं तुहानू कहा सी ना कि तुसी समझ के ना कि पत्रलेखा कौन है, राजकुमार राव दी वाइफ। जी हाँ, ते अपने ही घर दे बेस्ट एक्टर यानी कि राजकुमार राव नू ही लिया इस फिल्म दे विच। इस तों बेहतर चॉइस हो ही नहीं सकती कोई। हर एक्टर दा सिलेक्शन जबरदस्त हैगा इस विच। फिल्म हर किसी दी कॉमिक टाइमिंग कमाल दी हैगी है ते अजिहे अजिहे ट्विस्ट आउंदे ने ना जो तुसी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। कुल मिला के नैटफ्लिक्स ते फिल्म जरूर देखने वाली है, पर जरूर देखो तुसी।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वंसर वाने हम ते जी आपचे संदेश अलग दिन आल तुसी बने हुए हूँ। गल कर लेने एक्टिंग दी। वैसे तो राजकुमार कमाल दे एक्टर है कि ने, बहुत शानदार एक्टर ने। ते एक बार फिर उन्होंने कमाल दा ही काम किया है। इतने भी उन्होंने उन्होंने देख के अजिहा लगता है कि वह इस रोल के लिए बने हैं। इस तरह के किरदारों राजकुमार ने बेहतर इस तो कोई निभा ही नहीं सकता। राजकुमार हर फ्रेम विच छाए हुए ने। साने मल्होत्रा ने कमाल दा काम किया है। एक करैक्टर उन्होंने पिछलियां सारिया फिल्म सारे किरदारा तो वक् है। एक वाइफ जो थोड़ी जी डोमिनेटिंग है कि है अर्चना पूरन सिंह नू हुण तक तुसी कॉमेडी करते हुए देखा है, पर इत्थे वो जो कर रही है कि है वो तुहानू चौंका के रख देगी। अर्चना का काम जबरदस्त हैगा। अभिषेक बैनर्जी छोटे जे रोल विच छा गए हैगे ने। सीमा पावा ने कमाल दा काम किया है। हर एक्टर अपने किरदार दे नाल पूरा इंसाफ जरूर कर रहा है।

0: ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहां ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
6: They see pretty. Hey, yo, Sean.

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
4: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं. निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं.

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट विरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज्जी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

The number is 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
6: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
5: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नो अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
6: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
5: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
7: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
8: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
7: ऐसा क्या खास है वहाँ?
8: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
7: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
8: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanyar. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहां ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
6: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 41009, फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan
13: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: तुम्हारे साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम,

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035।

0: साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlum and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji no on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: করে।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: To everyone tuning into Radio Biswani, this is Shah Rukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan, and you are listening to Radio Biswani.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
5: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006644355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
9: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट, वोलोंगाबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है आध्यात्मिक धार्मिक सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेद

हेलो जी, नमस्ते, दाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सब सुन रहे हैं रेडियो ब्रेसवानी, आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजी चांदनी जैन के साथ चांदनी के सफर प्रोग्राम में, जो कि आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रेसवानी में। और दोस्तों, ये सफर हमेशा की तरह आप सभी का बेहतरीन जाए, आप सभी मोटिवेट हो, यही मेरा मेन मोटिव होता है कि आप सभी को कुछ न कुछ अच्छी चीजें ही मैं आप सभी के सामने पेश करूं, ताकि वो जीवन भर हमारे काम आता रहे। क्योंकि मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहती। लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जो कहते हैं ना कि हम लोग सहकर सीखते हैं। हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसी चीजें एंटर हो जाती है जिससे हमें दुख तो होता है, लेकिन वो चीजें हमें लेसन सिखाती है। तो कभी भी किसी भी चीजों से हार नहीं माननी चाहिए, उसका डट के सामना करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हमारी लाइफ में वेस्ट नहीं होती है। कुछ लेसन सिखा के जाती है, कुछ एक्सपीरियंस दे के जाती है। तो आप सभी पर जुड़े रहिए, आज भी कुछ ऐसी बेहतरीन बातें हैं, टॉपिक है जो आज हम जानेंगे रेडियो ब्रेसवानी में। आप जुड़े रहिए और आइए इंजॉय करते हैं इस गीत को।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हमारे सामने दोस्त और पीठ पीछे दुश्मन। क्या जाने आपने कि क्या मैंने आप सभी से कहा? दोस्तों, आज हम जानेंगे उन संकेतों को, आज हम पहचानेंगे उन लोगों को जो हमारे सामने कुछ और पीठ पीछे सारी हरकतें दुश्मनों की तरह। आज हम जानेंगे उन चेहरों को जो वाकई ही हमारे सामने कुछ और दिखते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, लेकिन हमें ये चीज समझ नहीं आती कि असली में हमारा दोस्त कौन है और पीठ पीछे हमारी वही दोस्त क्या दुश्मन है। तो आज हम इसको जानने वाले हैं, जो कि हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सब चीजों में एज फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि हर एक एज ग्रुप में कोई ना कोई दोस्त ऐसा होता है जो बहुत अच्छा भी होता है और बहुत बुरा भी होता है, लेकिन उनको पहचानना कैसे है आज हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।
1: अरे

दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अचानक बिहेवियर में चेंजेस आना। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पहले हमारे सामने क्या होता है, नॉर्मल होता है या फिर दोस्तों जैसा व्यवहार करता था, लेकिन अचानक से उसके व्यवहार, उसके बर्ताव में एकदम से अगर आपको चेंजेस दिखती है तो ये एक बहुत ही जरूरी हिंट होता है। वो इंसान अब आपसे कम बातें करता है और दूरी बनाए रखता है, या फिर ये कह सकते हैं कि पहले की तरह हैप्पी नहीं होके बात करता है, ना ही पहले की तरह मिलता है या फिर बातें करता है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है, ऐसी चेंजेस आप देख रहे हैं, तो वहीं पर इशारा समझ जाइए कि वो आपका दोस्त नहीं है, वो जरूर चेंज हो चुका है। कई बार लोग आपसे सीधे आकर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनका लगातार बदलता हुआ व्यवहार उनके दिल में चल रही चीजों को साफ दिखा देता है। इस तरह के लोगों से मिलते और बात करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए, जो लोग अचानक से अपना व्यवहार जो है बदल देता है। तो ये है पहला संकेत। दूसरा संकेत क्या है जानेंगे इस गीत के बाद। सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी।

अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, जो कि है हम जब भी सफल होते हैं या किसी भी चीज में हमको जीत हासिल होती है तो वो चुप रहता है या फिर उसको जेलस फील होती है। जी हाँ, जब आपको किसी भी काम में सफलता मिलती है दोस्तों, तो आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ना तो खुश होते हैं और ना मतलब खुलकर आपकी तारीफ कर पाते हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसा हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इस तरह के जो लोग होते हैं दोस्तों, वो आपके सामने तो नॉर्मल व्यवहार करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपसे जलते रहते हैं। जी हाँ, इसी से मेरे को एक याद आई बात, चाणक्य नीति जी के अकॉर्डिंग भी कहा जाता है, चाणक्य जी ने कहा है कि सच्चे लोग सिर्फ वही है जो आपकी सफलता में भी खुश होते हैं और आपके बेहतर करने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। वही जो भी लोग आपकी सफलता में चुप रहते हैं या फिर आपसे कहते हैं ना अचीवमेंट्स को कम करके दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके लिए कभी भी सही नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो ये तो था आपका दूसरा हिंट। अब तीसरा संकेत क्या है, कैसे पहचाने, जानेंगे इस गीत के बाद। सुनते रहिए रेट ब्रिस्वानी।

आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, जो कि है आपकी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर बोलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति आपकी कही गई बातों को अपने हिसाब से बदल कर या फिर बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने पेश कर रहा है, तो आपको कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो दूसरों के सामने आपकी तो छवि जो है वो तो नुकसान पहुंचा सकते हैं आपकी छवि को, क्योंकि ये कभी भी दूसरों के सामने आपकी बातों को सही तरीके से नहीं रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति जी के भी अकॉर्डिंग आपको इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ रिश्तों में गलत फहमी पैदा नहीं करते हैं, ये आपकी जो प्रतिष्ठा है उस पर भी बुरा असर डाल सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग आपकी बात को सही सही ना कहकर तोड़ मड़ोड़ कर कहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो ये था तीसरा संकेत। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।

दोस्तों आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट बात जानी है कि जो लोग हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में गलत बोलते हैं, हमारी सफलता में खुश नहीं होते हैं, अचानक से अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर लेते हैं या हमारी बातों को गलत प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो ऐसे लोगों से सावधानी बरतनी चाहिए। और दोस्तों जरूरत के टाइम पर वो लोग आपसे अगर दूरी बना दें तो समझ लेना वो लोग आपके लिए नहीं है। उन लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो पीठ पीछे भी आपके बारे में बातें करते हैं, वो लोग सच्चे दोस्त नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप पहचानेंगे तो हम हमेशा सावधानी बरतेंगे, तो हमेशा हम बचे रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो है बहुत कम मिलते हैं जो कहते हैं ना कि एंड तक हमारा साथ निभाते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। लेकिन आजकल के टाइम पर लोग ऐसे हैं जो जरूरत पड़ते ही हमारे पास आ जाते हैं और जब हमें जरूरत होती है तो भाग जाते हैं। और हमारे लिए मतलब कहते हैं ना आजकल पैसे का जमाना है, आजकल लोगों का प्यार, लोगों की रिस्पेक्ट, लोगों की फ्रेंडशिप ये सारी मायने नहीं रखती, जहां पैसा वहां पे लोग। तो इसीलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अपने पर विश्वास रखें, हमेशा खुद को मोटिवेट करें, अपनी फैमिली के साथ हमेशा खड़े रहें, यही काम आएंगे। तो ये थी आज की टॉपिक, कैसा लगा जरूर मैसेज करके बताइएगा अपने फीडबैक द्वारा। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रह्मस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान बेनकाब, अमेरिका ने खोली आसिम मुनीर के सीजफायर के दावों की पोल। अमेरिकी दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से बड़े पैमाने पर संपर्क साधा था। जी हां, अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हाल ही में सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों से एक बड़ा खुलासा हुआ है। इन दस्तावेजों के अनुसार पिछले साल मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राजनेताओं, रक्षा अधिकारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हितधारकों के साथ बड़े पैमाने पर संपर्क साझा था। जेल से रिहा हुए थाईलैंड के पूर्व पीएम थाकसिन शिनावात्रा 8 महीने रहे बंद। थाईलैंड के प्रभावशाली पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्हें पैरोल पर अपनी 1 साल की सजा के शेष 4 महीने पूरे करने की अनुमति दी गई है। अदालत के उस फैसले के बाद थाकसिन को 8 महीने जेल में बिताने पड़े, जिसमें कहा गया था कि जेल से बचने के लिए उन्होंने गलत तरीके से अस्पताल में रहने का बहाना बनाया था। शिप पर सवार अमेरिकी नागरिक मिला हंटा वायरस से संक्रमित, ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को बाहर निकाला। हंटा वायरस से प्रभावित लग्जरी क्रूज शिप एमवी होर्डिंग्स से निकाले गए एक अमेरिकी नागरिक में वायरस के एंडीज स्ट्रेन की हल्की पुष्टि हुई है, जबकि एक अन्य अमेरिकी यात्री में इसके हल्के लक्षण दिखाई दिए हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस बीच ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों ने बचाव अभियान और क्वारंटीन के प्रयास तेज कर दिए हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने बताया कि डच झंडे वाले इस जहाज पर सवार सभी 17 अमेरिकियों को एयरलिफ्ट करके अमेरिका ले जाया जा रहा है। आइए जुड़ते हैं अब भारत के साथ और सुनते हैं भारतीय खबरें। पुर्तगाल ने अभय राणा के प्रत्यर्पण में किया सहयोग, भारत ने जताया आभार। भारत ने अभय राणा के प्रत्यर्पण में सहयोग के लिए पुर्तगाल का आभार व्यक्त किया है। सरकार ने इस कदम को विदेश में रह रहे वांछित अपराधियों को वापस लाने के अपने निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: कल जाने के वक्त मैंने कहा था कि भाई लोग रात भर जाग कर दगुना नहीं पियो, तो किसी ने कहा आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि चलो अपना पिता समझो मुझे, ठीक है, इफ यू डोंट माइंड, उस एज का हूं मैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आई डोंट वांट यू यंग पीपल टू स्पॉइल योर लाइफ. देखिए स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है,
1: आई हार्डली स्लेप लास्ट नाइट.
0: दिमाग फ्रेश रहता है और नींद मेमोरी और कंसंट्रेशन इंप्रूव करती है, यू नो दैट राइट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इन टू द रैम स्टेट. दिल की जो हेल्थ है, आपका जो हार्ट, ये सब पर असर पड़ता है. कम नींद से हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है. ओके, डिड यू नो दैट इफ यू डोंट स्लीप इनफ यू कैन गेट अ स्ट्रोक और अ हार्ट प्रॉब्लम. बॉडी रिपेयर होती है.
1: आई थिंक यू आर टारगेटिंग मी दिस वीक.
0: नो बॉडी. Why always seems
1: because,
0: like
1: because yesterday it, whatever you any said human it being, was aimed at me.
0: See, this is the bad thing about radio. It is one to one. Whatever we say, जो वहाँ पर अकेला बैठ के सुन रहा है वो सोच रहा है कि हम उन्हें कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं. नहीं, हम जनरली बात करते हैं. कुछ बात है जो आप पर शायद लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बैठकर आपको वहां देख रहा हूँ, कौन मुझे सुन रहा है और मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों. बॉडी रिपेयर होती है सोते वक्त, मसल्स और सेल्स भी रिपेयर होते हैं, ठीक है. तो याद रखना, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और अच्छी नींद से बॉडी इन्फेक्शंस जो है इसे बेटर फाइट कर सकती है.
1: ओके
0: ओके. और मूड बेटर रहता है. व्हाट काइंड ऑफ मूड एम आई टुडे?
1: बिटी एंड देयर काना. या यू नॉट ग्राउची फॉर श्योर, बट यू नॉट ओवरली हैप्पी ईदर. यू लाइक इन बिटवीन.
0: आई हैड अ मेबी सी दिस इज राइट. सो आई हैड अ या नींद की कमी से इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ सकता है. ओके कितनी नींद लेनी चाहिए? एडल्ट्स कहते हैं लगभग 7 से 9 घंटा, विच इज इम्पॉसिबल. ओल्डर एडल्ट्स अराउंड 7 to 8 hours. और बच्चों को और ज्यादा नींद चाहिए होती है. यू नो दैट यू हैव टू नीड. आई नो सम चिल्ड्रन गो टू बेड एट 6 o'clock.
1: वाओ रियली?
0: या एंड लेट मी टेल यू अबाउट दिस किड्स, दे आर डक्स ऑफ द स्कूल मैन.
1: रियली?
0: या
1: वेल दैट जस्ट गोस टू शो देन
0: दे आर सपोज टू शो दैट किड्स शुड नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट. दिन भर थकान, गुस्सा या चिड़चिड़ापन, ध्यान ना लगाना, बार बार भूलना, ड्राइविंग में नींद आना, ये सब नींद की कमी से होती है. आई थिंक आई एम इन ऑल ऑफ दिस कैटेगरीज, यू नो. दिन भर थकान, यस, गुस्सा या चिड़चिड़ापन, ये भी है मेरे पास. ध्यान ना लगाना, ये भी है मेरे पास. बार बार भूलना, ये तो नंबर 1 है मेरे साथ. और ड्राइविंग में नींद आना, करता हूँ कभी कभी, तो ये सब तो यार मुझ पर लागू है, कैसे बात है. ओके, बेटर स्लीप टिप्स. रोज एक ही टाइम पर सोना दोस्तों, हमेशा. सोने से पहले मोबाइल कम यूज करना बिकॉज ऑफ द ब्लू राइज. ओके, आई नो समवन हु लव्स स्लीप द स्लीप एंड या बट वेरी शार्प. रात में ज्यादा चाय कॉफी अवॉइड करना, ठीक है. कमरा थोड़ा ठंडा और क्वाइट रखना. यू नो इफ इट्स टू हॉट यू कांट स्लीप. ओके. और खाने सोने से पहले खाना मत लादना, हैवी फूड. ओके, दैट्स नो नो. I've got a good habit. I try to finish my dinner by 5:30 nowadays. I mean, I've always do that, but
1: okay.
0: It's hit.
1: Can
0: hit
1: I ask a question here?
0: Yeah, yeah.
1: You may finish your dinner about 5:30.
0: Yeah.
1: What time do you go to bed?
0: Man, that is something is shifting. The time is shifting every day.
1: See, that's
0: now.
1: Not good.
0: I go to bed. One night I went to bed at 7:30.
1: Okay.
0: It's not the other way. It's this way.
1: Oh.
0: Right. And I do sleep
1: yeah,
0: well.
1: Yeah, because it's advisable, say if you're eating at 5:30 or 6, right? Not to go extremely late to bed. Because then your body.
0: No, I don't have that problem.
1: Because then you getting hungry.
0: No, I don't have that problem.
1: And then you have a problem trying to sleep.
0: Like sometimes, yeah. Sometimes I used to have a kava, right? One or two or three, four balls of kava. I mean, yeah.
1: Three,
0: you know what I mean.
1: Four?
0: No. I mean, drinks, right?
1: Isn't that a
0: I stopped
1: much?
0: That.
1: Good.
0: I stopped that.
1: Good.
0: Not balls. I mean, the small one that you drink in. I mean, three or four, maybe five. Okay, maybe six.
1: There's
0: right?
1: a joke here.
0: Wait, maybe six, right? But I stopped there. What used to happen if you do that? You got to go to the, you know, to urinate.
1: Yeah, you have
0: and
1: to
0: once you
1: break
0: wake
1: your
0: up,
1: sleep. Yes.
0: This is what you don't want to do.
1: Yes.
0: Get up to urinate. I mean, I know some people are diabetic, they do that. But if you don't get up, you are sleeping throughout. So that is true. No coffee, no tea at that time. You cut it off so that you don't have to wake up at night. Because once you wake up, it is hard to go back to sleep. Isn't it? Sometimes you fall back.
1: But if you're
0: right
1: having
0: away.
1: Tea and coffee, they say the caffeine is going to keep you alert.
0: Well, it doesn't affect me. But
1: so I think they say make your last cup like 2 or 3 latest in the day. I think.
0: Okay, about 3 o'clock.
1: Okay.
0: Say, yeah.
1: So with all the things you were saying that you were reading out and saying, oh, that is me, that Panditji.
0: Panditji.
1: Hari Om, Panditji.
0: Kuch na ho to fir havan karo raat ko. Theek hai, Panditji. Aap taiyar rahenge aane ke liye.
1: Panditji says, Bhai JP is a combo pack all in him. When you were saying, giving that list, oh, that's me, that's me.
0: ओके चलो गीत हो जाए दोस्तों रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं नंबर है 04300031701

नाचना है ना जाओ, मेरे साथ शर्त लगाओ, ये करके दिखाओ, ये

0: ऑलराइट, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं दोस्तों, आपकी अपनी पहचान. और क्या, आगे आगे बढ़ते हैं. और एक एक गीत है जो शायद आप लोगों को याद होगा, पुराना गीत है भी. एक दो पुराने गीत भी बजाएंगे ना.
1: या
0: सो कौन सा गीत है आप बता, कौन सी मूवी से है? What train we have taken today?
1: I don't know. You started it.

0: दोस्तों क्या आप जानते हैं दिस इज वॉज द वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग सॉन्ग्स ऑफ बॉलीवुड. लेकिन इन बॉलीवुड हिस्ट्री इन 1964 जो एक मिस्ट्री थ्रिलर था वो कौन थी का गाना था दोस्तों. इसमें साधना और मनोज कुमार दोनों ने अभिनय किए थे इसमें. और पीपल मेक मिस्टेक, ये गाना गाया था लता मंगेशकर, लेकिन लॉट ऑफ पीपल थिंक कि आशा जी ने गाया इस गीत को. नहीं, या आशा भोसले, नो, इट वाज लता जी.
1: या
0: ऑफ द स्पूकी स्टाइल एंड दैट्स व्हाई दे थॉट इट माइट हैव बीन है. ये सॉन्ग क्यों इतना फेमस हुआ, बिकॉज इसका जो एको लाइक वोकल है इसमें, राइट. और मिस्टी रेन एटमोस्फियर, जब मनोज जी उधर जा रहा था जंगल में, स्लो हॉन्टिंग मेलेडी, द मिस्टीरियस अपीयरेंसेस ऑफ साधना ड्रेस्ड इन व्हाइट, एंड बीइंग अ ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, अमिता, इट हैड मोर इफेक्ट, यू नो. सिनेमेटोग्राफी मेड इट इवन क्रीपियर इन द फिल्म. द हीरो कीप्स सीइंग अ मिस्टीरियस वुमन हु मे ओ मे नॉट बी अ गोस्ट. देखिये दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो सोने जा रहे हैं, तो आपको बता दूं, अब ऐसा इसमें हम हल गए हैं, मालूम नहीं कोई भूत का असर है क्या, हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं. तो अगर आप डर रहे हैं तो शायद आपको रेडियो ऑफ करना पड़ेगा दोस्तों. नहीं, अच्छा, नैना बरसे रिम झिम, आईज रेन सॉफ्टली लाइक ड्रिजल. The song mixes romance, sadness, mystery and supernatural feeling. Naina barse rim jhim piya tora aave ki aas. Theek hai? Lyrics expresses longing for a loved one while creating a ghostly atmosphere.
1: See, I didn't see the movie, but I only knew the song.
0: Yeah.
1: So with my imagination, it was somebody who was missing somebody and longing for somebody.
0: Well, that's
1: it was
0: a
1: very
0: ghost.
1: Sad. Yeah. Well, I don't know. I'm saying okay. I didn't know the movie, all the right. background. I just only knew the song growing up, you know.
0: Madan Mohan was known as the king of ghazals, and this song is often considered one of the finest examples of early melody in Hindi cinema. और मूवी इटसेल्फ, वो कौन थी, बिकेम अ कल्ट क्लासिक बिकॉज ऑडियंसेस केप्ट गेसिंग. राइट, सो यू गॉट वॉच द मूवी. वाज द क्वेश्चन कुड बी, वाज द वुमन अ गोस्ट, अ स्पिरिट, और पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी. You see how it takes a turn?
1: Yeah,
0: the mystery made the song even more powerful because of, So, चलिए, ये था इस गीत पर, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग सॉन्ग्स ऑफ बॉलीवुड आपको बताया हमने. डोंट वरी, यू
1: डोंट बी स्केयर्ड.
0: या डोंट बी स्केयर्ड.
1: इफ यू टेक राम नाम के ले लो,
0: या तो हवन करो,
1: ये वो बुचरा, ये क्लेंस द प्लेस.

0: reason, Apple.
1: Yeah.
2: Okay, stop it.

0: Wow.
1: Brings up the suspense.
0: अच्छा सोचो दोस्तों, अब बड़े मजे में हो और कोई 11-12 बजा होगा रात, ठीक है, आप मगन में हो, गा रहे हो और चारों बगल जंगल है और आप just happy, right?
1: Doing your own thing.
0: And then all of a sudden, something you hear or you think you have heard, you know, and you just
1: stop in your tracks.
0: Stop in your tracks. ऐसा कुछ आपको सोचाने लगता है, फिर आप क्या करते हो? भागते हो, दौड़ते हो, भागते हो वहाँ से?
1: You scream.
0: Scream.
1: Scream.

0: प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ लेकर आ गए दोस्तों। हम आज से हम अब भूत को भी नहीं छोड़े हैं, गोश्त को भी नहीं छोड़े हैं, हम सबको लेकर हम आपके साथ चल रहे हैं दोस्तों, है कि नहीं। देखिए गोश्त के बारे में अगर दुनिया भर में देखिए अलग अलग बिलीफ्स है, ठीक है,
1: यस,
0: और लेकिन साइंटिफिक प्रूफ अब तक नहीं मिला है कि गोस्ट रियल या सुपरनेचुरल बींग्स होते हैं, साइंटिफिकली नहीं प्रूफ किया गया है। लेकिन लोग क्या मानते हैं दोस्तों, देखिए डिफरेंट कल्चर और रिलीजन में बिलीफ होता है, डिफरेंटली होता है। आत्मा सोल जो है ना, जो डेथ के बाद भी एग्जिस्ट करता है, करती है, अनफिनिश्ड बिजनेस वाली स्पिरिट्स जो यहाँ की रुक जाती है, ठीक है, जो एंसेस्टर्स के स्पिरिट्स भी होते हैं जो कभी कभी हमें मिलने आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जगह यानी हॉन्टेड प्लेसेस में एनर्जी रहता है, एनर्जी रहती है। Would you believe that?
1: The energy remains?
0: Yeah, in...
1: is what you said, because of unfinished business.
0: Or India mein bhi churel. Are badi churel. Bhoot, preth, jaisi stories purani tradition ka part hai, theek hai? Aur science ke hisab se... गोस्ट के एक्सपीरियंसेस का जो एक्सप्लेनेशन यूजुअली नेचुरल होता है, स्लीप पैरालिसिस, ओके, आधी नींद में डर लगना, मूवमेंट ना होना। If you ever felt you trying to move your leg or something, you can't, and you try to call out somebody's name and you can't.
1: You know that happened to me when
0: what
1: I was little.
0: What is the meaning of that? It happened to me a few times.
1: Like trying to scream in my sleep, but like there's no voice coming out.
0: Yeah, but you know what? Then I woke up and I found my both hands were on top of my chest. That's why I couldn't talk. I couldn't, because I think that pressure was affecting me. You understand what I mean?
1: But you know what I did then as a kid? I was like trying to scream because I felt like that, and I'm trying to scream and no voice is coming out.
0: Yeah, that's what I mean.
1: And I like thought, I'm not lying, I'm not exaggerating. I thought of Hanumanji.
0: Yep.
1: And guess what?
0: That went away?
1: Feeling went away.
0: Oh, no. But mine, no, Hanuman, nobody could do
1: no,
0: anything.
1: No, well, I'm just telling
0: my
1: you,
0: hand
1: this
0: had
1: was,
0: to move.
1: I remember it clearly.
0: Yeah, okay. So, jab haath hat gaya mera, to then, you know, because my hands must be heavy. Yo, he's on top of my chest, so I could, okay.
1: Yeah, maybe that's why.
0: कभी कभी स्ट्रेस और एग्जाइटी और डिम लाइट्स, इमेजिनेशन, ब्रेन का पैटर्न जो होता है ना, वो कंप्लीट करना, हम चीजों को शेप दे देते हैं, इसीलिए कार्बन मोनोक्साइड या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, कभी कभी हेलोसिनेशन हेलोसिनेशंस भी हो सकता है। अगर आप सफोकेट कर रहे हैं, रूम में अच्छा वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, ये सब आपको अजीब अजीब सपने दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है, और दिमाग कंफ्यूजन में गोस्ट जैसा फील क्रिएट कर सकता है। अगर आपका दिमाग में क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन है ना, ये सब दिमागी चीज है दोस्तों। अच्छा, क्यों गोस्ट स्टोरीज इतना फेमस है? ह्यूमंस को मिस्ट्री पसंद है, ठीक है, डेथ और अननोन चीजें स्केरी होती है, राइट, मूवीज और सॉन्ग्स जैसा हॉन्टेड बॉलीवुड सॉन्ग्स एटमोस्फियर बना देती है, ठीक है,
1: ट्रू,
0: और कल्चर और ट्रेडिशन से स्टोरीज पास होती रहती है, यू नो, लाइक डरना। और कुछ लोग का मानना है कि गोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, स्पिरिचुअल बिलीफ है। साइंस कहता है इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, और बहुत केसेस माइंड, फियर और एनवायरनमेंट से एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है, माइंड ओवर मैटर। तो ऐसा होता है दोस्तों, हम इमेजिन करते हैं माइंड में बहुत कुछ, लेकिन बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं कभी कभी, जब आप कुछ सोचा भी नहीं इसके बारे में, ये कैसे दिमाग में आता है? दिस वन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसका अभी तक तो नहीं मिला है, कि कभी आप उठते सोचते होंगे यार ये सपना क्यों मैंने देखा। यू एवर हैपेंड लाइक दैट?
2: Some very weird sapna. You never would have imagined. Yep. Mm. And it comes. Oh, the mind is something, isn't it?
1: The mind is a very dangerous thing.
2: Mm. Very, very. No, mind is a, what do you call? Oh, mind is, mind is something.

करें, ऐसा मूड है तो बजाएंगे जरूर। और ये जो गीत है दोस्तों, इसका मूड बहुत मिस्टीरियस है, जैसे रात का जंगल हो, आप अकेले हो, और ढूंढ है, फोग सभी बगल है, और आपको ऐसे कोई अननोन प्रेजेंस लग रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई आपके साथ है ना, तो ऐसे एटमोसफियर में एक गीत है दोस्तों। और फिर आपको एक औरत की आवाज आती है, ओहो,

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, मुझे ये कहना ना बहुत अच्छा लगता है। इसको कहने के साथ रियलाइज होता है कि यार ब्रिस्बेन मेरे लिए कितना खास हो चुका है। और इस खास की वजह ये है कि ब्रिस्बेन ने मुझे पहचान दी है, आप सबसे मिलवाया है, आप सबके घर घर तक पहुंचाया है। सो गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन कहने में अपनी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि बस आप जहां भी हैं आपके हर एक लिसनर के घर में पहुंच गई हूँ। लेकिन ब्रिस्बेन के अलावा भी रेडियो ब्रिस्बेन को बहुत सारे लोग सुनते हैं और अलग अलग देशों से सुनते हैं, राइट? सो जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं, जिस भी देश, जिस भी कंट्री तक इस वक्त मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सबको गुड मॉर्निंग। रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM पर इस वक्त आप हैं दोस्तों, और आपके साथ है सताक्षी। सुबह है, हसीन मौका है, दस्तूर है हमारा कि हम बहुत ही खूबसूरत गाने, एनर्जी से भरे हुए, डांस से भरे हुए, रोमांस से भरे हुए यहाँ पर सुनते हैं, ताकि उस एनर्जी को हम दिन भर बरकरार रख सकें। सो आज भी ऐसे ही कुछ खूबसूरत गाने सताक्षी आपके लिए लेकर आई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के गाने आपको बहुत बहुत बहुत अच्छे लगने वाले हैं। सो चलिए, देर किस बात की है, जैसा कि मैंने कहा, मौका भी है, दस्तूर भी है, सुबह का वक्त भी है हमारा और आपका साथ भी है, तो इंजॉय करते हैं अभी अगला ट्रैक। के प्लस टू रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM सताक्षी के साथ, सुनते रहिए।

वेल फ्रेंड्स, इसके पहले कि हमारे इट हैपेंस के सफर में आगे बढ़ें, बहुत सारी बातें आपसे करें, ये वक्त है कुछ खास, क्योंकि हमें उन खास लोगों को विश करना है जिनके लिए आज का दिन खास है। वैसे आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं इट हैपेंस और आपके साथ है सताक्षी, और आपको कहती है एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और जैसा कि मैंने कहा, ये वक्त खास है, तो भाई जिनके लिए भी खासम खास ये दिन इसलिए है क्योंकि आज के बर्थडे बेबीज हैं वो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज का दिन। जन्मदिन जो है वो हमें ये बताता है कि हम सबके लिए कितने खास हैं, न जाने कितनी विशेज आती हैं, कितनी प्रायोरिटी हमें मिलती है, हमें कोई हर्ट नहीं करता है, हमसे सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं और हमसे ट्रीट भी मांगते हैं, तो यार पैसे भी खर्च होते हैं। बट कुछ भी कहिए, इस दिन का अपना ही मजा है, और मेरी ये दुआ है कि आपकी पूरी जिंदगी ऐसे ही खूबसूरत बनी रहे। जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, उन सबको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है जिंदगी की, जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, यानी कि रोज ही कहती हूँ यार, कि जिंदगी हमेशा एक सी नहीं होती है। जब आप शादी करते हैं तो आपको लगता है वाह, अब जिंदगी बड़े मजे में कटेगी, लेकिन सच बात यह है कि शादी के बाद ही समझ में आता है कि जिंदगी जो है वो सिर्फ फूलों का बिस्तर नहीं है। जिंदगी में हमें बहुत सारी परेशानियों को भी फेस करना है, जिंदगी के उतार चढ़ाव भी फेस करने हैं, लेकिन मजे की बात यह है आज तक वो उतार चढ़ाव हम हमें अकेले फेस कर रहे थे, और अब उनमें हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ कोई है। सो एक दूसरे का साथ यूं ही निभाते रहिए जिंदगी के सफर में, और बहुत सारी वेडिंग एनिवर्सरीज जो है वो भी आपकी जिंदगी की आनी बाकी हैं। आई विश कि ये रिश्ता हर साल हर दिन खूबसूरत होता रहे। जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। दुआ है हमारी कि आपकी जिंदगी जो है वो खुशियों से भरी रहे, और जो भी कुछ आज के दिन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको जरूर मिले। और मुझे ये भी लगता है कि अगर मेहनत की है तो फल भी जरूर मिलेगा। आप सबको डेडिकेट करने जा रही हूँ ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

वेलकम बैक, इट हैपन, सुन रहे हैं आप रेडियो प्रसानी 1701 AM पर। दोस्तों, आपके साथ है सताक्षी और आज सुबह हम फिर से जिंदगी पर एक बार ताजा तरीन बातें कर रहे हैं। आई होप कि आप इस सफर को मेरे साथ सुन भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है। देखिये, लाइफ में हम ना हमेशा एक बहुत ही बेवकूफी भरी हरकत करते हैं। जी हाँ, हम हमेशा लोगों से सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं, हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। और अगर बाय चांस कोई कह दे कि नहीं, तुम जिंदगी में ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं है, तो हम ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं जिसका क्या ही कहें। देखिए, लाइफ में हमेशा एक बात याद रखिए कि आपको रिजल्ट, आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये किसी से जानने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को बताने की जरूरत है, राइट? अगर आपको किसी को बताना ही है कि आप जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या किसी से अपने कर्म को जानना ही है, तो वो ईश्वर है, वो ऊपर वाला है जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। और किसी को भी आपको ये बताने की चेताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। आपके कर्म का फैसला एक्चुअली वही करेंगे, इसलिए सिर्फ उन्हें बताइए, उनकी निगाह में अपने कर्म अच्छे रखिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अपनी अच्छाई का किसी को प्रूफ मत दीजिए, है ना? आप जो कर रहे हैं अगर आपकी नजर में, आपकी आत्मा के हिसाब से सही है, तो वो सही है। सुनते रहिए ठापन सताक्षी के साथ और चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं ये एक और खूबसूरत ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

दोस्तों, हम अक्सर अपनी प्रार्थनाएं लेकर भगवान के पास जाते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान उन्हें पूरी भी कर देंगे। आप रोज सुबह जो है भगवान से, ईश्वर से कुछ न कुछ मांगने के लिए ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर यानी चर्च, गुरुद्वारे जाते हैं, है ना। हमेशा कुछ ना कुछ तो चाहते ही हैं। अदरवाइज कहते हैं ना कि अगर कोई जरूरत ना हो तो हम भगवान को भी याद ना करें। और हमें लगता है कि हमारे जाने से, उनको प्रसाद चढ़ाने से, चढ़ावा चढ़ाने से, दान दक्षिणा देने से हमारी मन्नत जो है पूरी हो जाएगी। पर मैं कहती हूँ कि भगवान ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। आपको पता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकले बिना जा रहे हैं कि भगवान मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। और एक इंसान जो मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, उसने दिन रात एक कर रखा है, आपको क्या लगता है भगवान उसको छोड़कर सिर्फ एक प्रार्थना करने वाले का साथ देंगे? कभी नहीं देंगे, क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है ना कि कर्म करो, और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको उसका फल कैसे मिलेगा। इसलिए सिर्फ प्रार्थना करने से, प्रेयर्स करने से कुछ नहीं होने वाला। इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप हार्ड वर्क करें, एक्चुअली वर्क तो करें, हार्ड वर्क भी बाद में आता है। सुंदरी सताक्षी के साथ रीजी ब्रस्वानी पर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी सुनवाती हूँ आपको ये एक और बेहतरीन ट्रैक।

0: feelings.
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
4: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
3: ऐसा क्या खास है वहाँ?
4: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
3: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
4: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
5: वेलकम बैक इट हैपेंस में, आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM पर। और इट हैपेंस में दोस्तों, ये वक्त है आज की गानों की हैट्रिक का। आज के तीन बैक टू बैक ट्रैक्स लेकर मैं हाजिर हूँ, तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला ट्रैक कौन सा है।

जी हाँ, रेडियो प्रसानी पर आपके मॉर्निंग शो, आपके ब्रेकफास्ट शो को आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आइए अपने ब्रेकफास्ट शो में जरा आगे लेकर चलते हैं आपको गानों की हैट्रिक के इस लास्ट ट्रैक के साथ, और इसके उस पार होंगी आपके साथ और भी प्यारी और खूबसूरत बातें। सो कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रसानी।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

देखिए, जिंदगी में दोस्तों बेटर चीजें ढूंढना या बेटर पाने की चाहत रखना कोई गलत बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है, हम जितने सक्षम हैं, जितने कैपेबल हम हैं, हम उससे आगे बढ़ने की सोचते हैं, राइट? और इसमें कुछ गलत नहीं है। आप आए हैं तो इस दुनिया की हर चीज का मजा आपको लेना जरूरी है। आप लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बट वो चीजें जिन्हें पाने के लिए आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपना पूरा टाइम उन पर दे रहे हैं, अपना दिन जो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं या जिस दिन को आप खूबसूरत बना सकते हैं, उस दिन की खूबसूरती आप उस चीज को दे रहे हैं, उस अपनी एक विश को दे रहे हैं, तो कम से कम जो आपके पास है उस पर भी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको पता है, जो चीजें आपके पास है ना, वो लोगों का सपना है। तो जो आपको कम लग रहा है वो किसी और के लिए बहुत है। इनफैक्ट वो उतना ही मिल जाए इसका सपना देखता है और आपको उसकी वैल्यू तक नहीं है। तो वैल्यू कीजिए ये सोच कर ही कि बहुत लोगों के पास वो नहीं है जो आपके पास है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सेंटेंस अगर आप सोचेंगे कि हमारे पास जो है वो कितने लोग पाना चाहते हैं या कितनों के पास नहीं है, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको आपके पास जो चीजें हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड आ जाएगा, आप शुक्रगुजार हो जाएंगे ऊपर वाले के। तो आगे बढ़िए जिंदगी में, लेकिन अपनी चीजों की वैल्यू कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए, अवॉइड मत कीजिए। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। आइए अभी बढ़ते हैं आगे इस अगले ट्रैक के साथ।

पुरस्वानी पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों आज हमने बहुत सारी बातें की हैं जिंदगी पर, जिंदगी के किस्सों पर, और इनफैक्ट अभी भी कर रहे हैं, आगे भी हम करेंगे, लेकिन स्ट्रगल या हार्डशिप के बिना हमारी बातें जो है वो अधूरी हैं, है ना। क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट शो है, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम अपने गोल पर, अपने मोटिव पर पहुंचें, मोटिव पर बरकरार रहें और अपनी मंजिल पर पहुंचें, राइट। सो जिंदगी के ये जो हार्ड वर्क या हार्डशिप की बातें हैं, इन्हें भी तो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्ट्रगल या हार्डशिप आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाते हैं। हमें लगता है ना कि यार कितना स्ट्रगल है ज़िंदगी में, कितनी मेहनत अभी और करनी है ज़िंदगी में। ये टफ टाइम जो है, ये टफ तो ज़रूर होता है, लेकिन यही टाइम होता है जो आपको लाइफ टाइम सीख देकर जाता है। सक्सेस आपको कुछ सिखाती नहीं है, वहाँ तो लोग आपको चढ़ाते हैं, आपकी वाहवाही करते हैं। आप जितना सक्सेसफुल होते हैं ना, लोग आपको दुगना उससे बना देते हैं। आपके आगे नकली इमेज जो है वो आपकी, और भी खूबसूरत इमेज आपकी खड़ी करके वो अपना फायदा आपसे निकालते हैं और आपका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन जब आप फेलियर्स का सामना करते हैं, जब आप हार्डवर्क कर रहे होते हैं, या फिर जब आपका टफ टाइम चल रहा होता है, उस टाइम आप रियलाइज करते हैं कि यार जिंदगी का हर पल हमें सिखा रहा है, और वो सीख जो है वो आगे आने वाले वक्त में आपके काम आती है। इनफैक्ट आपकी सक्सेस में, आपको उस सक्सेस को बनाए रखने में आपके काम आती है। क्या समझे? सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर इट हैपेंस। और चलिए, इतनी खूबसूरत सी बात है, इस खूबसूरत बात के बाद बढ़ते हैं सफर में आगे।